0: Jupiter swings, suddenly it disappears. We can understand the popularity of a person. We can understand the performance of a government. But we cannot understand how anti-incumbency disappears.
1: जिस जमाने में वोटर आईडी कार्ड नहीं थे, जिस जमाने में बूथ कैप्चरिंग होती थी, तब तक एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के लिए भी काम नहीं करती थी. जब से पारदर्शी इलेक्शन हो गए हैं, लोकल पुलिस की बजाय सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस आती हैं, जब से सीसीटीवी आ गए हैं, सीसीटीवी की लाइव फुटेज आती है, जब से स्वतंत्र मीडिया और स्वतंत्र जुडिशरी हो गई है, तब से उनको लाले पड़ गए हैं.
2: सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज ने ये बात रखी थी कि चुनाव आयोग को और इलेक्शन कमिश्नर जो भी हैं, जिन्होंने इस तरह का भेदभाव किया है, संविधान और नियम कानून का उल्लंघन किया है, किसी की कठपुतली बने वो स्वयं इस्तीफा दे दें. जो भी इलेक्शन कमीशन के जो नियम उल्लंघन किए हैं उसके खिलाफ जो लोग खड़े हैं, हम तो पहले से ही लड़ रहे हैं. हम लोगों ने तो फेस किया है. ये जो बाई इलेक्शन जिस तरह से इन्होंने लूटे थे, मैं तो कफन लेकर के लोकसभा में गया था, अगर आपको याद हो, क्योंकि कफन लेकर के इसलिए गए थे ये बताने के लिए कि चुनाव आयोग मर गया है.
3: राहुल गांधी जी की आदत बन गई है कि उठो और आरोप लगाओ, लेकिन जनता ने बार बार उनको जवाब दिया. अभी वो झूठ की गूंज के कार्यक्रम कर रहे थे, और उसके बाद जितने चुनाव हुए, पंजाब विश्वविद्यालय का हुआ विद्यार्थी परिषद जीती, दिल्ली विश्वविद्यालय का हुआ विद्यार्थी परिषद जीती, राजस्थान में स्थानीय निकाय के चुनाव हुए भारतीय जनता पार्टी जीती, हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज स्थानीय निकाय के चुनाव हुए भारतीय जनता पार्टी जीती, इनकी झूठ की गूंज पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है. ये जितना मर्जी झूठ बोले, लोग जागरूक हैं, इनके झूठे बातों में भ्रम फैलाने वालों में नहीं आने वाले.
4: चुनाव आयोग जो है बीजेपी का आयोग बन चुका है, और ज्ञान कुमार को मैं कहना चाहता हूँ कि सब दिन समय एक सरीका नहीं है. थोड़ा शर्म करो तुम कि देश के संविधान के साथ तुम खिलवाड़ कर रहे हो. अभी अगर हमको अगर एक खून अगर माफ होता ना, तो सबसे पहले ज्ञान को गोली मार देते. लेकिन अब क्या करें, हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन आने वाला समय में ये छूटेंगे नहीं. 29 में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनेगी, अब पहला आदमी यही होंगे जेल जाएंगे, और जो इनके साथ में जो लोगों ने किया है वो सब जेल जाएंगे, कोई बचने वाला नहीं है.
5: द काइंड ऑफ एक्टिविटी इज बीन इन्वॉल्व, इट्स ओपन. टू इलेक्शन कमीशन मेंबर्स हैव ओपनली कम आउट अगेंस्ट द एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एंड we demand that he should be arrested immediately, and it amounts to treason, anti-national activity by a constitutional head, man who is holding a constitutional position. So immediately he should be arrested, and therewith action should be taken.
6: Moving on to more updates coming in at this hour, we have some important updates coming in the IIT Bombay case. Well, the exam malpractice versus caste-wise debate is raging at IIT Bombay. It continues to simmer. Now, Sahil's parents have gone on a hunger strike. They are now demanding the immediate arrest of Professor Dula and an independent probe be conducted in the death of their son. They are now questioning the selective leaking of the CCTV footage, asking why only one portion of the video was made public. The investigation, however, says the footage shows Sahil looking at his phone. While a friend has told investigators that Sahil had said, and I quote, that I made a mistake. The initial probe has also found no evidence of a caste bias. Professor Dula, who is now booked under the SCST Act, is yet to be questioned. He has, however, been sent on a leave till investigation is concluded. In fact, we also have some more updates coming in on the case. In fact, NDTV's Padmaja Joshi has spoken to Sahil's parents. Let's also listen in to what they had to say.
7: सबसे पहले जो आप यहाँ पर धरने पे बैठे हैं, आपकी मांग क्या है? क्योंकि एक सीसीटीवी का फुटेज बाहर आया है जिसमें कुछ दिख रहा है कि शायद साहिल के हाथ में कुछ था. क्या कहेंगे आप उसके बारे में?
8: वो जज का मामला है मैडम. वो जज जो ऑफिसर है वो करेंगे, उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा. हाँ, वो इतना वीडियो लीक हो रहा है तो पूरा वीडियो क्यों नहीं बोले उन्होंने सवेरे से शाम तक? बाकी इसमें कुछ नहीं, जांच अधिकारी सब वो पता करेंगे सर।
7: पर इस वीडियो को देखने के बाद भी आपको क्यों लग रहा है कि उनके साथ किसी तरीके की ज्यादती हुई थी? क्योंकि यहाँ पर तो दिख रहा है कि कुछ शायद हुआ था, कुछ गलत हुआ था। आपको इस वीडियो के बारे में क्या लगता है, क्या हुआ इसमें?
8: नहीं, वो अंदर वो जाते वक्त दिखा सर, उसके पीछे गए तो आगे क्या हुआ अपने को मालूम नहीं। वो भी सामने लाना जरूरी है, उसके बाद उसने क्या करे क्या करे। अभी मैं तो कोई नहीं, ये जांच अधिकारी करेंगे।
7: आपको क्या लगता है साहिल के हाथ से क्या लिया गया?
8: अधिकारी अच्छी तरह वो
7: जो दिखाया गया है क्या था साहिल के पास?
8: उसने वो क्या मालूम, वो कुछ नहीं, मैंने ज़्यादा वो देखा नहीं, वो सही है या गलत मैं वो भी नहीं बोल सकता। हाँ, पर लेकिन वो जांच का मामला है, जांच अधिकारी उसकी जांच पूरी तरह करेंगे। उन पर मेरा पूरा भरोसा है।
7: ये कहा जा रहा है कि साहिल के पास फ़ोन था, वो वीडियो में फ़ोन दिख रहा है या कुछ और?
8: कुछ नहीं, वो यही बात बोल रहे हैं, वो जांच का मामला है, वो जांच अधिकारी जो निर्णय लेंगे वो मेरे को सब ये है बस।
7: तो रविंद्र जी, फिर आप धरने पे क्यों बैठे हैं? जांच तो चली रही है क्राइम ब्रांच की।
8: जांच चल रही मैडम, वो मेरी जांच के लिए मेरी कोशिश नहीं, मेरी ये गुजारिश है कि उनको अटक होना चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए दोनों लोग। मेरी मांग जांच की नहीं है, अभी जांच तो हो रही, सब हो रहा है, अटक अरेस्ट हो।
7: पर जांच खत्म होने से पहले अरेस्ट कैसे होगा?
8: अभी तक का आप ये देखिए, आईआईटी में इतने जाने जा रहे हैं मैडम, आपको भी बचाऊंगा आप क्या। हाँ, बस प्लीज प्लीज प्लीज सर।
6: और लेट्स नाउ टेक यू टू मोर अपडेट्स कमिंग इन। वेल, गौतम अदानी हैज अनवील्ड अ मेजर इन्वेस्टमेंट पुश फॉर बंगाल, अनाउंसिंग प्लान्स टू डिप्लॉय ओवर 1 लाख करोड़ रुपीस अक्रॉस द स्टेट ओवर द नेक्स्ट डेकेड। नाउ द इन्वेस्टमेंट विल स्पैन पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स, पावर, रोड्स, ब्रिजेस, ग्रीन सीमेंट एंड इवन हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स। स्पीकिंग एट इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स कोलकाता, नाउ गौतम अदानी सेड दैट द ईस्ट मस्ट राइज फॉर इंडिया टू अचीव इट्स नेक्स्ट $1 trillion ऑफ ग्रोथ, कॉलिंग बंगाल अ स्ट्रेटेजिक नेशनल नोड। He also noted the 2,000-bed Adani Arogya Mandir in New Town, with half the beds dedicated to those unable to afford quality medical care. Gautam Adani said he hopes that Bengal will become his second Karma Bhumi.
9: For several decades, much of India's economic momentum has been driven by the western and southern corridors of our country. The next chapter must create new centers of gravity, however challenging it may be, for India's next $1 trillion of growth. The East must rise. Mundra in the West was to become my first Karma Bhumi. Today, with the same humility and sense of responsibility, it is my prayer to Ma that Bengal in the East becomes my second Karma Bhumi. I often tell my team, every generation gets a moment when history opens a wider window. In such moments, the greater risk is not looking too far ahead. The risk is allowing the limits of the present to define the possibility of our future. The risk is not about building too early. It is about building too late.
6: On that note, we're slipping into a very short break. See you on the other side with more news and updates. Stay on with us.
10: Hello and welcome to Apple Park. I am so thrilled to be here today. Every day, people around the world rely on our products.
11: Siri AI can find what you need and get more done than ever. And it already works seamlessly with over 300,000 apps.
12: NDTV's big splash at Apple event. NDTV at Apple's biggest upgrade. NDTV app in Apple Global Showcase. NDTV makes it to the world's biggest tech moment. NDTV app is the most trusted. NDTV, when it really matters.
13: A generation with questions.
14: The starry and the whole glamorous side of it.
15: As I said, like, I can't empathize with it.
13: Unconventional.
16: I feel blessed. As long as the work is going on, I'm happy.
13: Unapologetic. Unafraid of change. Ready to challenge.
17: Aspirational.
13: The ideas. The issues.
18: You really are.
13: The young view.
19: Public perception.
13: NDTV Yuva. 28 September 2026. Only on the NDTV network.
20: 5 hours to go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Siddaramaiah.
21: NDTV stands completely engaged with Karnataka.
22: High rate, check the audio, high rate, check the audio.
21: Let's do it, let's do it, let's start.
23: Breaking story, we're jumping straight into it.
21: We've got a picture of the letter. What is in your letter? You can never predict what's going to happen in Tamil Nadu politics.
24: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
25: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling.
26: For a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
27: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
25: The line of control, Shiv Arur, NDTV.
13: Voices that redraw boundaries.

0: जिस जमाने में बूथ कैप्चरिंग होती थी तब तक एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के लिए भी काम नहीं करती थी। जब से पारदर्शी इलेक्शन हो गए हैं, लोकल पुलिस की बजाय सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस आती हैं, जब से सीसीटीवी आ गए हैं, सीसीटीवी की लाइव फुटेज आती है, जब से स्वतंत्र मीडिया और स्वतंत्र जुडिशरी हो गई है, तब से उनको लाले पड़ गए हैं।
1: सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज ने ये बात रखी थी कि चुनाव आयोग को और इलेक्शन कमिश्नर जो भी हैं जिन्होंने इस तरह का भेदभाव किया है, संविधान और नियम कानून का उल्लंघन किया है, किसी की कठपुतली बने वो स्वयं इस्तीफा दे दें। जो भी इलेक्शन कमीशन के जो नियम उल्लंघन किए हैं उसके खिलाफ जो लोग खड़े हैं, हम तो पहले से ही लड़ रहे हैं, हम लोगों ने तो फेस किया है। ये जो बाई इलेक्शन जिस तरह से इन्होंने लूटे थे, मैं तो कफन लेकर के लोकसभा में गया था अगर आपको याद हो, क्योंकि कफन लेकर के इसलिए गए थे ये बताने के लिए कि चुनाव आयोग मर गया है।
2: राहुल गांधी जी की आदत बन गई है कि उठो और आरोप लगाओ, लेकिन जनता ने बार बार उनको जवाब दिया। अभी वो झूठ की गूंज के कार्यक्रम कर रहे थे और उसके बाद जितने चुनाव हुए, पंजाब विश्वविद्यालय का हुआ विद्यार्थी परिषद जीती, दिल्ली विश्वविद्यालय का हुआ विद्यार्थी परिषद जीती, राजस्थान में स्थानीय निकाय के चुनाव हुए भारतीय जनता पार्टी जीती, हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज स्थानीय निकाय के चुनाव हुए भारतीय जनता पार्टी जीती। इनकी झूठ की गूंज पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। ये जितना मर्जी झूठ बोले लोग जागरूक हैं, इनके झूठे बातों में भ्रम फैलाने वालों में नहीं आने वाले।
3: चुनाव आयोग जो है बीजेपी का आयोग बन चुका है और ज्ञान कुमार को मैं कहना चाहता हूँ कि सब दिन समय एक सरीका नहीं है, थोड़ा शर्म करो तुम कि देश के संविधान के साथ तुम खिलवाड़ कर रहे हो। अभी अगर हमको अगर एक खून अगर माफ होता ना तो सबसे पहले ज्ञान को गोली मार देते, लेकिन अब क्या करें, हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन आने वाला समय में ये छूटेंगे नहीं। 29 में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनेंगे, अब पहला आदमी यही होंगे जेल जाएंगे, और जो इनके साथ में जो लोगों ने किया है वो सब जेल जाएंगे, कोई बचने वाला नहीं है।
4: द काइंड ऑफ एक्टिविटी इज बीन इन्वॉल्व, इट्स ओपन। टू इलेक्शन कमीशन मेंबर्स हैव ओपनली कम आउट अगेंस्ट द एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड we demand that he should be arrested immediately and it amounts to treason, anti-national activity by a constitutional head, man who is holding a constitutional position. So immediately he should be arrested and therewith action should be taken.
5: Moving on to more updates coming in at this hour, we have some important updates coming in the IIT Bombay case. Well, the exam malpractice versus caste-wise debate is raging at IIT Bombay. It continues to simmer. Now, Sahil's parents have gone on a hunger strike. They are now demanding the immediate arrest of Professor Dula and an independent probe be conducted in the death of their son. They are now questioning the selective leaking of the CCTV footage, asking why only one portion of the video was made public. The investigation, however, says the footage shows Sahil looking at his phone. While a friend has told investigators that Sahil had said, and I quote, that I made a mistake. The initial probe has also found no evidence of a caste bias. Professor Dula, who is now booked under the SCST Act, is yet to be questioned. He has, however, been sent on a leave till investigation is concluded. In fact, we also have some more updates coming in on the case. In fact, NDTV's Padmira Joshi has spoken to Sahil's parents. Let's also listen in to what they had to say.
6: सबसे पहले जो आप यहाँ पर धरने पे बैठे हैं, आपकी मांग क्या है? क्योंकि एक सीसीटीवी का फुटेज बाहर आया है जिसमें कुछ दिख रहा है कि शायद साहिल के हाथ में कुछ था, क्या कहेंगे आप उसके बारे में?
7: वो जज का मामला है मैडम, वो जज जो ऑफिसर है वो करेंगे, उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। वो इतना वीडियो लीक हो रहा है तो पूरा वीडियो क्यों नहीं बोले उन्होंने सवेरे से शाम तक? बाकी इसमें कुछ नहीं, जांच अधिकारी सब वो पता करेंगे सर।
6: पर इस वीडियो को देखने के बाद भी आपको क्यों लग रहा है कि उनके साथ किसी तरीके की ज्यादती हुई थी? क्योंकि यहाँ पर तो दिख रहा है कि कुछ शायद हुआ था, कुछ गलत हुआ था। आपको इस वीडियो के बारे में क्या लगता है, क्या हुआ इसमें?
7: नहीं, वो अंदर वो जाते वक्त दिखा सर, उसके पीछे गए तो आगे क्या हुआ आपने को मालूम नहीं, वो भी सामने लाना जरूरी है। उसके बाद उसने क्या करे क्या करे, अभी मैं तो कोई नहीं, ये जांच अधिकारी करेंगे।
6: आपको क्या लगता है साहिल के हाथ से क्या लिया गया?
7: अधिकारी अच्छी तरह वो
6: जो दिखाया गया है क्या था साहिल के पास?
7: उसने वो क्या मालूम, वो कुछ नहीं, मैंने ज़्यादा वो देखा नहीं, वो सही है या गलत मैं वो भी नहीं बोल सकता। हाँ, पर लेकिन वो जांच का मामला है, जांच अधिकारी उसकी जांच पूरी तरह करेंगे, उन पर मेरा पूरा भरोसा है।
6: ये कहा जा रहा है कि साहिल के पास फ़ोन था, वो वीडियो में फ़ोन दिख रहा है या कुछ और?
7: कुछ नहीं, वो यही बात बोल रहे हैं, मैं वो जांच का मामला है, वो जांच अधिकारी जो निर्णय लेंगे वो मेरे को सब ये है बस।
6: तो रविंद्र जी फिर आप धरने पे क्यों बैठे हैं? जांच तो चली रही है क्राइम ब्रांच की।
7: जांच चल रही मैडम, वो मेरी जांच के लिए मेरी कोशिश नहीं, मेरी ये गुजारिश है कि उनको अटक होना चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए दोनों लोग। मेरी मांग जांच की नहीं है, अभी जांच तो हो रही, सब हो रहा है, अटक अरेस्ट हो।
6: पर जांच खत्म होने से पहले अरेस्ट कैसे होगा?
7: अभी तक का आप ये देखिए, IIT में इतने जाने जा रहे मैडम, आपको भी बचाऊंगा, आप क्या। हाँ बस बस, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ सर।
5: और let's now take you to more updates coming in. Well, Gautam Adani has unveiled a major investment push for Bengal, announcing plans to deploy over 1 lakh crore rupees across the state over the next decade. Now, the investment will span ports, logistics, power, roads, bridges, green cement and even hyperscale data centers. Speaking at Indian Chamber of Commerce, Kolkata, now Gautam Adani said that the East must rise for India to achieve its next $1 trillion of growth, calling Bengal a strategic national node. He also noted the 2,000-bed Adani Arogya Mandir in New Town, with half the beds dedicated to those unable to afford quality medical care. Gautam Adani said he hopes that Bengal will become his second Karma Bhumi.
8: For several decades, much of India's economic momentum has been driven by the western and southern corridors of our country. The next chapter must create new centers of gravity, however challenging it may be. For India's next $1 trillion of growth, the East must rise. Mundra in the West was to become my first Karma Bhumi. Today, with the same humility and sense of responsibility, it is my prayer to Ma that Bengal in the East becomes my second Karma Bhumi. I often tell my team, every generation gets a moment when history opens a wider window. In such moments, the greater risk is not looking too far ahead. The risk is allowing the limits of the present to define the possibility of our future. The risk is not about building too early, it is about building too late.
5: On that note, we're slipping into a very short break. See you on the other side with more news and updates. Stay on with us.
9: Hello and welcome to Apple Park. I am so thrilled to be here today. Every day, people around the world

0: with the case. As M.K. Stalin accuses the TVK of using the case for political gains, a charge the party has strongly denied. All right, our big focus currently, the poll panel rift is now wide open and the opposition is planning a fresh move to oust the Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar. LOP Lok Sabha Rahul Gandhi launched a scathing attack on the Chief Election Commissioner last evening at a press briefing. And Rahul Gandhi categorically argued that all elections were being rigged in the country. Accusing Gyanesh Kumar of acting against India, he demanded his resignation, accused the BJP of poll rigging for defying the anti-incumbency trend. The BJP has since hit back with its own barb, blaming Rahul Gandhi and Sonia Gandhi for strong anti-incumbency for Congress and accusing them of putting the blame of their electoral frustration on the Election Commission of India. Meanwhile, you must note that opposition leaders, besides Rahul Gandhi, are also upping the ante, demanding an impeachment of the Chief Election Commissioner and, of course, action against him too. The Congress has announced a nationwide stir from today, with the CWC expected to discuss the issue next week as well. And sources are telling us that there is consensus within the India bloc over impeachment. Meanwhile, the CJP has also issued a 48-hour ultimatum. The Cockroach Janata Party is threatening another protest, calling it Jantar Mantar 2.0. We've lined up crucial political reactions you cannot ignore. Listen in.
1: I've been saying from the beginning, 3 years now, that votes are being stolen, elections are not fair. Now you're saying to me that the Congress party is saying this. No, the Congress party was saying it. Now the election commission itself is saying it.
2: Unse ek sawal pucha gaya press conference mein ki ye election mein ye vote chori ho jati aapko kab pata chala to aap log ja ke dekhiye unka 7 saal ki umar mein 1977 mein bhai sab 7 saal ki umar mein mujhe lagta hai agar inki itni prabal medha hoti itni prabal shakti hoti smaran shakti to mujhe lagta hai आज कांग्रेस की इतनी दुर्गति नहीं होती.
1: इलेक्शन कमीशन हैज लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द वोटर्स. द वोटर लिस्ट दैट यूज्ड टू बी ए क्लीन प्रॉपरली डिफाइंड वोटर लिस्ट इज नाउ ए करप्टेड वोटर लिस्ट. इट हैज बीन डिस्ट्रॉयड. पीपल हैव बीन रिमूव्ड. पीपल हैव बीन एडेड. देयर इज केयर्स.
2: रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 का सेक्शन 21(3) स्पष्ट रूप से अधिकृत करता है चुनाव आयोग को कि वो कभी भी अपनी इच्छा और व्यवस्था के अनुसार एसआईआर करवा सकता है.
1: हरियाणा स्विंग्स फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर फॉर 50 इयर्स. सडनली एंटी इनकम्बेंसी डिसअपीयर्स. महाराष्ट्र स्विंग्स सडनली डिसअपीयर्स. वी कैन अंडरस्टैंड द पॉपुलैरिटी ऑफ अ पर्सन. We can understand the performance of a government, but we cannot understand how anti-incumbency disappears.
2: जिस जमाने में वोटर आईडी कार्ड नहीं थे, जिस जमाने में बूथ कैप्चरिंग होती थी, तब तक एंटी-इनकम्बेंसी कांग्रेस के लिए भी काम नहीं करती थी. जब से पारदर्शी इलेक्शन हो गए हैं, लोकल पुलिस की बजाय सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस आती हैं. जब से सीसीटीवी आ गए हैं, सीसीटीवी की लाइव फुटेज आती है. जब से स्वतंत्र मीडिया और स्वतंत्र जुडिशरी हो गई है, तब से उनको लाले पड़ गए हैं.
3: सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज ने ये बात रखी थी कि चुनाव आयोग को और इलेक्शन कमिश्नर जो भी हैं, जिन्होंने इस तरह का भेदभाव किया है, संविधान और नियम कानून का उल्लंघन किया है, किसी की कठपुतली बने वो स्वयं इस्तीफा दे दें. जो भी इलेक्शन के कमीशन के जो नियम उल्लंघन किए हैं, उसके खिलाफ जो लोग खड़े हैं, हम तो पहले से ही लड़ रहे हैं. हम लोगों ने तो फेस किया है. ये जो बाई इलेक्शन जिस तरह से इन्होंने लूटे थे, मैं तो कफन लेकर के लोकसभा में गया था, अगर आपको याद हो. क्योंकि कफन लेकर के इसलिए गए थे ये बताने के लिए कि चुनाव आयोग मर गया है.
4: राहुल गांधी जी की आदत बन गई है कि उठो और आरोप लगाओ, लेकिन जनता ने बार बार उनको जवाब दिया.

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: lapses in the special intensive revision of electoral rolls. The Congress is now questioning how anti-incumbency could seemingly affect successive governments, but not the BJP. And on Rahul Gandhi's claim that anti-incumbency has disappeared for the BJP because of its alleged collusion with the Election Commission, the BJP has cited the Congress's electoral record in states including Tamil Nadu, West Bengal, Bihar, Uttar Pradesh, and Odisha to hit back. This with BJP Sudhanshu Trivedi questioning Rahul Gandhi's understanding of Indian electoral history as well. You must note, opposition leaders too are upping the ante, demanding an impeachment of Gyanesh Kumar and action against him. In fact, the Congress is directing its state units to organize protest marches to their respective state election commission offices from today, demanding Gyanesh Kumar's immediate arrest, removal from office, and an independent review of all decisions and electoral roll changes made under him. Sources also say there's consensus within the India bloc over impeachment. Meanwhile, the Kokro Janta Party has also issued a 48-hour ultimatum threatening what they are calling Jantar Mantar 2.0. Here are the crucial reactions you cannot ignore.
1: I've been saying from the beginning, 3 years now, that votes are being stolen, elections are not fair. Now you're saying to me that the Congress party is saying this. No, the Congress party was saying it. Now the election commission itself is saying it.
2: Unse ek sawal pucha gaya press conference mein ki ye election mein ye vote chori ho jati hai, aapko kab pata chala? To aap log ja ke dekhiye, unka 7 saal ki umar mein 1977 mein. भाई साहब, 7 साल की उम्र में मुझे लगता है अगर इनकी इतनी प्रबल मेधा होती, इतनी प्रबल शक्ति होती, स्मरण शक्ति, तो मुझे लगता है आज कांग्रेस की इतनी दुर्गति नहीं होती.
1: इलेक्शन कमीशन हैज लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द वोटर्स. द वोटर लिस्ट दैट यूज्ड टू बी ए क्लीन प्रॉपरली डिफाइंड वोटर लिस्ट इज नाउ ए करप्टेड वोटर लिस्ट. इट हैज बीन डिस्ट्रॉयड. People have been removed, people have been added, there is chaos.
2: Representation of People Act 1950 का section 21(3) स्पष्ट रूप से अधिकृत करता है चुनाव आयोग को कि वो कभी भी अपनी इच्छा और व्यवस्था के अनुसार SIR करवा सकता है.
1: हरियाणा swings from one party to another for 50 years. Suddenly anti-incumbency disappears. Maharashtra swings, suddenly it disappears. We can understand the popularity of a person. We can understand the performance of a government. But we cannot understand how anti-incumbency disappears.
2: Jis zamane mein voter ID card nahi the, jis zamane mein booth capturing hoti thi, तब तक एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के लिए भी काम नहीं करती थी. जब से पारदर्शी इलेक्शन हो गए हैं, लोकल पुलिस की बजाय सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस आती हैं, जब से CCTV आ गए हैं, CCTV की लाइव फुटेज आती है, जब से स्वतंत्र मीडिया और स्वतंत्र जुडिशरी हो गई है, तब से उनको लाले पड़ गए हैं.
3: सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज ने ये बात रखी थी कि चुनाव आयोग को और इलेक्शन कमिश्नर जो भी हैं, जिन्होंने इस तरह का भेदभाव किया है, संविधान और नियम कानून का उल्लंघन किया है, किसी की कठपुतली बने वो स्वयं इस्तीफा दे दें. जो भी इलेक्शन कमीशन के जो नियम उल्लंघन किए हैं उसके खिलाफ जो लोग खड़े हैं, हम तो पहले से ही लड़ रहे हैं. हम लोगों ने तो फेस किया है. ये जो बाई इलेक्शन जिस तरह से इन्होंने लूटे थे, मैं तो कफन लेकर के लोकसभा में गया था, अगर आपको याद हो, क्योंकि कफन लेकर के इसलिए गए थे ये बताने के लिए कि चुनाव आयोग मर गया.
4: राहुल गांधी की आदत बन गई है कि उठो और आरोप लगाओ, लेकिन जनता ने बार बार उनको जवाब दिया. अभी वो झूठ की गूंज के कार्यक्रम कर रहे थे और उसके बाद जितने चुनाव हुए, पंजाब विश्वविद्यालय का हुआ विद्यार्थी परिषद जीती, दिल्ली विश्वविद्यालय का हुआ विद्यार्थी परिषद जीती, राजस्थान में स्थानीय निकाय के चुनाव हुए भारतीय जनता पार्टी जीती, हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज स्थानीय निकाय के चुनाव हुए भारतीय जनता पार्टी जीती. इनकी झूठ की गूंज पर कोई विश्वास

0: All the three accused who have been arrested, one of the guy is Asif, other is Hemant, and the third accused here is named Mukesh, according to the Delhi police officials. We have seen that the police have scanned 50 CCTV cameras of the entire vicinity, and after that they had zeroed down Asif in this case. After that they had laid a trap, and in early morning a brief encounter had happened, and Asif was in fact taken into custody. He was under arrest by the Delhi police officials. So far we have seen the girl has in fact given out the whole detail of the incident as to how she reached the park and how all these three people who under the guise of Delhi police had come there, started threatening them, separated the boy and the girl, took the girl behind the bushes, and after that committed this heinous crime of gang rape while the girl was constantly crying in pain, and had also begged them that they should speak to their mother if they think that there's something wrong with both of them staying inside the park. But after that, we have seen these kind of series of incidents that have in fact unfolded, and Delhi police now further investigating this case to get more details. Over to you.
1: Well, we will, of course, continue to revert to you for regular updates. The finer details coming in from investigators at this point. Anushka, thanks so much for taking us through the latest statement. All right, on that note, let's turn our attention to the other big story we're tracking this morning. The debate over alleged exam malpractice and caste bias at IIT Bombay continues as Sahil Wakore's parents begin a hunger strike, demanding the immediate arrest of Professor Dula and also an independent probe into their son's death. They are demanding that Professor Dula be arrested immediately. They've also questioned why only a portion of the CCTV footage was made public. The investigation, however, says the footage shows Sahil looking at his phone, while a friend has told investigators that Sahil had said, and I quote, "I made a mistake." The initial probe, you must note, has found no evidence of caste bias. Professor Dula, meanwhile, who was booked under the SCST Act, is yet to be questioned by the crime branch, as he has been sent on 1 week's leave by the Institute. My colleague Prajakta has been tracking the latest details for us. Prajakta, take us through where this probe stands at the moment. We're given to understand that Sahil Wakore's parents are currently on a hunger strike.
2: I want to give you a more update about this case. First, the state Union Minister Ramdas Athawale is going to reach IIT Bombay. He will meet the officials and he will discuss the issue. Caste discrimination. As we all know that Sahil's parents are on hunger strike, and today they are continuing hunger strike. And if we talk about the crime branch, they are investigating the case. A crime branch has recorded 20 people statement till now.
1: Guys, we are having a tough time because of the ambient audio where Prajakta is at the moment. I sincerely apologize to you for that disruption. For now, let's turn our attention to the Prime Minister. He's currently delivering an address. Let's listen in.
3: जांच के क्रम में पता चला कि उसको कैंसर हो गया है। तो उनके घर में ऐसा लगा कि जैसे उनके परिवार में एक पहाड़ सा टूट पड़ा है, क्योंकि कैंसर नाम से ही लोग त्रस्त हो जाते हैं। तो उनके घर पे रोने धोने का सारा ये मन लगने लगा। तो फिर अपने एक कार्यकर्ता से उनका मुलाकात हुआ और वो आयुष्मान भारत से जो हमारे भारत सरकार और आपके आपका सोच है सर, जो ये आयुष्मान भारत कि हर गरीब तक अंतिम अंत्योदय के व्यक्ति तक अंतिम व्यक्ति तक जो स्वास्थ्य लाभ पहुंचे, कोई बिना इलाज के ना मरे, उसका सर फायदा मिला और वो बच्ची का पूरा इलाज हो गया सर, और अभी वो बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है और स्कूल वगैरह भी जा रही है सर। तो वो कहते कहते सर लगभग रोने जैसा हो गई और बोली कि हम तो कभी मिल नहीं पाएंगे आदरणीय मोदी जी से, लेकिन आप मोदी जी को हमारा एक संदेश जरूर दीजिएगा कि मेरा और मेरे पूरे परिवार का तरफ से मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और हम लोग जीवन भर उनका ऋणी रहेंगे और आप माने उनको भगवान मेरी उम्र भी उनको लग जाए ऐसा वो बताएं सर।
4: देखिए, मेरी तरफ से भी उस बच्ची को बहुत बहुत आशीर्वाद, लेकिन आपने देखा होगा
3: जी सर
4: कि जब योजनाएं बनती है तो कभी कभी लगता है चलो भाई सरकार है तो योजना बना दी। कभी कभी हम पॉलिटिकल लोग उस योजना का वर्णन भी करते हैं, लेकिन से योजना से जब किसी की जिंदगी बदल जाती है, किसी के जीवन में एक नई जिंदगी आ जाती है, तो कितना संतोष मिलता है ये आपने अनुभव किया होगा। और इसलिए सेवा यात्रियों के लिए ये भी एक प्रशिक्षण है कि सरकार की योजनाएं सिर्फ पैसे खर्च करना, राजनीतिक माइलेज कमाना इतना नहीं होता है। अगर वो योजना आखिरी व्यक्ति तक पहुंचती है तो उसके लिए तो एक नया जीवन शुरू हो जाता है और उसका जो संतोष है वो बड़ा अद्भुत होता है। और इसलिए मैं तो सभी सेवा यात्रियों को कहूंगा कि आप जीवन भर सार्वजनिक में जब जीते हैं तो सामान्य मानव के जीवन में जो बदलाव लाने वाली योजना है उसका उसको अधिक से अधिक लाभ मिले, सही लाभ मिले और उसकी जिंदगी भी सही रास्ते पर चले, इसके लिए लगातार हमने काम करते रहना चाहिए। हाँ बताइए और क्या कह रहे थे।
3: जी सर, उससे उसके बाद सर उस जिले से हम लोग आगे बढ़े तो एक सिहोरा जिला में हम लोग विधानसभा में गए, वहां पे नगर पार्षद सिहोरा में सफाई कर्मियों से हमारा संवाद था सर। तो सफाई कर्मियों से संवाद हुआ, उनका हम लोगों ने पूजन वगैरह किया, उसके बाद सर एक महिला से हमने बात करने की कोशिश की तो महिला से बात हुआ, तो थोड़ा पहले महिला शर्मा रही थी, फिर हमसे बात होने लगा, फिर हम महिला से पूछे कि कैसा लग रहा है चाची जी कि आपका सम्मान हम लोग कर रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है सफाई का, आप सफाई का काम करते हैं, स्वच्छता साथी हैं आप, कैसा ऐसा। तो ये बातचीत जब क्रम में होने लगी तो वो महिला बता रही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब से आए हैं उसके बाद से समय समय पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो सफाई कर्मियों के साथ बैठकर एक फोटो कभी आता है, सफाई कर्मियों के साथ बैठ के आप चर्चा कर रहे हैं, उन पर कभी फूल छिड़क कर आप उनका उत्साह वर्धन कर रहे हैं, तो उसके बाद से वो बोलती हैं कि जो लोग हमको समाज में पहले पूछते नहीं थे वो अभी हमको पूछ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा बदलाव हम लोग का आया है और हम लोग अब सर झुका के काम नहीं करते हैं, सर उठा के काम करते हैं। तो हम बोले आप सर उठा के काम, सर छुपा के, सर उठा के क्यों काम, ऐसा ऐसा क्या बोल रहे हैं? तो फिर वो बोल रहे हैं कि हम सर उठा के इसलिए काम कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, क्योंकि अब तो हम अपने सांसद जी को भी देखते हैं, अपने विधायक जी को भी देखते हैं, नेता जी को भी देखते हैं, जहां प्रधानमंत्री जी खुद झाड़ू लगा रहे हैं तो हम लोग को झाड़ू लगाने से क्या सर, ऐसा है सर।
4: देखिए उनका भी संदेश था, गांधी जी के जीवन की तरफ देखते हैं तो अंग्रेजों के खिलाफ तो लड़ाई लड़ते थे, आजादी का आंदोलन भी चलाते थे, लेकिन वो बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर भी थे। समाज में जो बुराइयां हैं उसके खिलाफ वो हमेशा कुछ न कुछ करते रहते थे, आवाज उठाते थे। हमें भी हमारे समाज में निरंतर रिफॉर्म भी हो उसके लिए हम राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने काम करते रहना चाहिए। सिर्फ अपनी वोट बैंक की तरफ ध्यान रख करके सब कुछ चलता है चलने दो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए ये स्वच्छता के साथ जुड़े हुए हमारे भाई बहन हैं, उनको गरिमा मिले, उनको सम्मान मिले, उनको हम गले लगाएं, क्योंकि वो समाज को कितनी बड़ी सेवा देते हैं, उस सेवा का सम्मान होना चाहिए। ये संस्कार समाज के एक एक घर में, एक एक व्यक्ति के जीवन में आना चाहिए। ये सिर्फ जब मैंने प्रयागराज में जो सफाई का काम करते थे और जिसके कारण प्रयागराज में हमारा कुंभ पूरी दुनिया में स्वच्छता के लिए मशहूर हो गया था, भारत की इज्जत बढ़ गई थी, तो मेरा मन कर गया कि जिन्होंने भारत की इज्जत को इतना बढ़ाया है, सफाई करके बढ़ाया है, मैं उनके पैर धो करके आशीर्वाद लूंगा। और इसलिए मैंने वो प्रयागराज में सभी हमारे सफाई कर्मी भाई बहन थे उनके पैर धो करके, क्योंकि उन्होंने भारत का सम्मान बढ़ाया था, उन्होंने वहां के लोगों को स्वच्छता दी, सुविधा दी, वो तो एक है, लेकिन उनके उस काम के कारण देश का सम्मान बढ़ा था। तो इसलिए कोई समाज में छोटा नहीं है, समाज में कोई काम छोटा नहीं है। आपकी सेवा यात्रा के माध्यम से आप भी जरूर अनुभव करते होंगे, आप भी सीखते होंगे और आप ये संदेश भी पहुंचाते होंगे। आइए, बहुत बातें हुई, आगे किसके साथ बात करेंगे?
5: धन्यवाद प्रदीप जी। माननीय प्रधानमंत्री जी, अब मैं आपकी अनुमति से जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश में हमारे जो सेवा यात्री हैं श्री रोहित सन्यासी जी, जो मूलतः उत्तर प्रदेश से ही हैं, उनसे विनती करूंगा कि वो आए और आपके समक्ष अपना अनुभव कथन प्रस्तुत करें।
4: रोहित जी नमस्ते।
6: सादर प्रणाम माननीय प्रधानमंत्री जी।
4: अभी कहां पहुंचे हैं आप लोग?
6: अभी माननीय जी मैं ललितपुर में अपनी टोली के साथ पहुंचा हूं।
4: आप सब ठीक है ना, कोई कठिनाई तो नहीं हुई है ना?
6: जी नहीं भाई साहब, एक नई ऊर्जा के साथ पूरी टोली आगे बढ़ रही है और रोज अपने मार्ग पे एकदम तेजी से आगे।
4: सभी राज्यों के लोग आपके साथ है तो सब राज्यों के विषय में भी जानकारी लेते हो नहीं, जब कहीं रात को रुकते हो
6: जी?
4: तो अलग अलग राज्यों के विषय में जानकारी लेते हो कि नहीं लेते हो?
6: हमारी जो सेवा टोली है इसमें हरियाणा और छत्तीसगढ़ के सेवा यात्री हैं और एक परिवार जैसा माहौल पूरी टोली के अंदर बन गया है। हम लोग साथ में उठते बैठते हर सेवा कार्य जो भी है सब साथ में मिलके करते, खाना पीना हर चीज, मतलब एक पारिवारिक माहौल बन गया है पिछले 6-7 दिनों में साथ रहते रहते।
4: आपकी टोली में है कोई जो पहले गुजरात गए हुए हैं?
6: हम ही गए थे अभी 6 महीने पहले, मैं गुजरात गया था।
4: और कोई गुजरात से परिचित नहीं है इसमें?
6: ये वहां पे अभी कोई परिचित नहीं हुए।
4: अच्छा, तो क्या आपने तो गुजरात देखा हुआ है तो इन सबको बताया गुजरात में कहाँ कहाँ जाएंगे, यात्रा के बाद वहां रुकेंगे तो क्या क्या देखेंगे, इसका कोई प्लान वान किया है कि भाग जाओगे?
6: नहीं नहीं, हम लोगों ने पूरे प्लानिंग की है कि वहां पे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और वहां पे जो
4: लिबर्टी तो अमेरिका में है भाई, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तो अमेरिका में है, तो अमेरिका जाओगे?
6: नहीं नहीं, वो
4: स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है।
6: जी जी जी
4: हाँ, देखिए यही है हम लोगों का काम कि सही बात हम भी याद रखें और गांव गांव तक सही बात सही शब्दों में पहुंचे, वरना क्या हम लोग सबको पता ही है, सबको पता ही ऐसा मानते, ऐसा नहीं होता है। हर चीज की बारीकियां लोगों को पता नहीं होती, बतानी चाहिए।
6: जी
4: हाँ रोहित जी बताइए, आपकी आवाज नहीं आ रही
6: भाई। तो वहां पे हम लोग,
4: हाँ बताइए, अब सुनाई दे रहा है।
6: जी भाई साहब, तो वहां पे हम लोग द्वारकाधीश जो पानी समुद्र के अंदर कॉरिडोर बना है, ये सब हमारे हरियाणा वाले भाई और छत्तीसगढ़ वाले भाई ने बोला है कि भैया वहां चलेंगे तो ये चीजें घूमना है।
4: अच्छा, तो यात्रा के दरमियान, वहां पे चलेंगे यात्रा के दरमियान
6: जी,
4: जो सेवा यात्रा है ये, आप सेवा का संकल्प लेकर के चले हैं, सेवा की कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि वाह इस सेवा के कारण कितना बड़ा हमें भी संतोष मिलता है, जहां सेवा कर रहे हैं उनको भी संतोष मिलता है, कोई बता सकते हैं अनुभव?
6: जब हम लोग यात्रा लेकर खजुराहो के पास पहुंचे तो रात में लगभग 9:30 बजे का टाइम था और उस समय मैंने वहां पे देखा कि रात में 9:30 बजे लगभग 100 की संख्या में बुजुर्ग महिलाएं बच्चियां बच्चे सब खड़े थे और वहां पे तो हाथ में एक बोर्ड लिए थे जिसपे लिखा था कि प्रधानमंत्री जी को जय श्री राम शुक्रिया। तो हम उनसे पूछे, हम कहे एक चीज ये बताइए, आप लोग इतनी रात में और इतनी ज्यादा संख्या में यहाँ पे खड़े हैं और ये मोदी जी को धन्यवाद वाला बोर्ड लेके क्यों खड़े हैं? तो उन्होंने बताया, एक दादाजी थे जिनकी एज लगभग 72 ईयर थी, उन्होंने बताया कि बच्चा जब हम लोगों ने यहाँ पे बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है यहाँ पे खून तो आराम से मिल सकता है था पहले, लेकिन जल खोजने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना हमको करना पड़ा और इस समस्या का निदान आज तक कितनी कोई भी सरकारें हम इसके बारे में विचार नहीं किया, लेकिन हमारे मोदी जी ने केंद्र सरकार की जो योजना ये केन और बेतवा परियोजना जो लाए हुए हैं, ये 2-3 साल में जब बनकर तैयार होगी तो जो चीज की पीड़ा हम लोगों ने सहा है वो हमारे बच्चों को इस पीड़ा को नहीं झेलना पड़ेगा और हम सुकून से ये आशा करेंगे कि हमारा बुंदेलखंड पिछले अगले 2-3 सालों में हरा भरा हर प्रदेश की तरह दिखाई देगा। तो ये चीजें जब मैं, वो लोगों के दिलों में किस प्रकार से अंदर तक एकदम अपनी जगह बना ली है और कितने अच्छे से वो लोग इतना ज्यादा आपको वो बोले कि अगर वहां जा रहे हो

0: मोदी जी को मेरा राम राम बोल दियो।
1: चलिए मेरा भी राम राम उनको बता दीजिए। अब आप लोग नौजवान है, आपने देखा होगा बुंदेलखंड में इतने बढ़िया बढ़िया किले हैं, क्या कभी उन किलों की तरफ नजर गई? पहले सुना भी नहीं था। और कभी मन करता है कि यात्रा पूरी होने के बाद कभी दो चार नौजवान की टोली बुंदेलखंड के हर किले पर चढ़ेंगे और हर किले को देख के आएंगे, ऐसा मन में इच्छा होती है कि सबको?
0: जी, एक दो जो पास में नजदीक में पढ़ते हैं वहां पे हम लोग स्वच्छता अभियान एक दो किलो पे जाके किया है।
1: ये बहुत अच्छा किया आपने, ये बहुत अच्छा किया, किले की सफाई की, बहुत अच्छा किया आपने। आपको मालूम होगा महाराष्ट्र के हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने खुद ने जाकर के किलों की सफाई का नेतृत्व किया था। ये करना चाहिए, ये बहुत अच्छा काम किया। लेकिन आपको मालूम है ना, बुंदेलखंड में मठा आलू खाया जाता है, नहीं खाया जाता है?
0: जी जी जी जी
1: हाँ, मैं जब भी गया बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के लोगों ने मुझे बहुत प्यार से खिलाया।
0: जी
1: देखिए साथियों, जब भी आप रास्ते में जाएं, आप लगातार सेवा का काम करते रहें। स्कूल के बच्चे हो, गांव के बुजुर्ग हो, हमारी योजनाएं हो, उस योजनाओं को लोगों को लाभ मिले। और लोगों को ये भी प्रेरित करना चाहिए कि देखिए, ये देश को विकसित भारत बनाना है तो हर किसी को कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। दो चार लोग करते रहे इससे बात बनेगी नहीं, ये भाव हरे के अंदर जगाना है आपको। दूसरा, आप जो अनुभव है आपके उसको लिखिए, लिखने का समय नहीं है तो मोबाइल फोन पर टैप कर लीजिए और जब यात्रा पूरी होने के बाद जाएंगे तब लिख लेना, ये आपको बहुत काम आए।
0: जी,
1: आप लोग रास्ते जी, में जी। ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाना, सोशल मीडिया का ग्रुप बनाना, लोगों से नंबर लेना, लोगों के मोबाइल में नमो ऐप डाउनलोड कराना, ये सब करते हैं क्या?
0: जी जी जी भाई साहब,
1: चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे कौन है भाई, बात करेंगे?
2: धन्यवाद जी। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके अनुमति से मैं अभी जिला सागर मध्य प्रदेश में उपस्थित श्री अमन अग्रहरि के जो छत्तीसगढ़ से हैं हमारे सेवा यात्री, उनसे निवेदन करूंगा कि वे आए और माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष अपना अनुभव कथन प्रस्तुत करें।
1: अमन जी नमस्ते।
3: नमस्ते, राधे राधे।

0: हूँ, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में, एक कोटा नाम का जनपद है अपना, वहीं से मूल निवास है मेरा।
1: तो आप पुराने मध्य प्रदेश से और नए मध्य प्रदेश में जा रहे हो?
0: जी, मैं आते वक्त ये बात बोला भी था कि मेरा जन्म तो वाकई में मध्य प्रदेश में ही हुआ है, लेकिन आज माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कारण हम कहीं छत्तीसगढ़ में पल रहे हैं,
1: अच्छा बताइए
0: कान्हा
1: भाई,
0: की तराई।
1: क्या अनुभव रहा है? आप घर
0: हम
1: परिवार में संपर्क
0: एक
1: रहता है, रोज डेली बात करते होंगे, घर में सारी बातें बताते होंगे,
0: हाँ जी
1: तो
0: जी
1: ऐसा
0: जी
1: तो
0: माता
1: नहीं
0: जी
1: है
0: से भी बात
1: सारे
0: होती है।
1: यात्री जैसे ही शाम को ठिकाने पर पहुंचते होंगे तो सब बातचीत करते ही नहीं होंगे, सब अपने अपने मोबाइल पर अपने घर में लग गए होंगे, ऐसा तो नहीं करते ना?
0: नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि यहाँ एक मेरा सुकमा का एक साथी है, जब लोग कई बार वो सुकमा का अपने इंट्रोड्यूस करता है तो उसे वो कई बार नक्सली के नाम से पूछ देते हैं, भैया आप तो नक्सली क्षेत्र से है ना, तो वो सुनकर कहीं ना कहीं मेरे को एक दर्द सा होता है कि भाई को इस तरह नक्सली से क्यों जोड़ा जा रहा है, लेकिन उतने में वो बड़ा हर्ष से उत्तर देता है, वो पुराना सुकमा था, अभी तो ये मोदी जी का सुकमा है जिसमें आज बहुत ही
1: लेकिन
0: अच्छे से हम लोग
1: आपने
0: खुशहाल जिंदगी जी रहे
1: आपने
0: हैं।
1: दुखी नहीं होना चाहिए, आप ठीक है, वो समय था और जनता याद रखेगी,
0: जी।
1: उनको ये भी बताइए हाँ ऐसी ऐसी भयंकर स्थिति थी, ये स्थिति का वर्णन जरूर
0: जी।
1: कीजिए, छुपाइए मत, और फिर बताइए कि
0: बिल्कुल।
1: धीरे धीरे करके 10 साल में क्या बदलाव आया और सुकमा अब
0: बहुत
1: सुकमा बन गया है, ये सबको बताइए आप।
0: जी, बिल्कुल। और एक अनुभव रहा है हम लोग का कि
1: हाँ
0: हम लोग एक यात्रा के दौरान अपने सागर जिला में ही एक बंडा स्थान पर रुके हैं, कल वहां एक आरती पूजन में हनुमान जी के सम्मिलित होना हुआ, वहां कुछ महिलाएं वहां कीर्तन कर रही थी, उस कीर्तन में हम सभी बैठकर भी उनका कीर्तन सुन रहे थे, उसी दौरान निकलते वक्त प्रसाद देते टाइम हमने एक माता जी के चरण छुए, चरण छूते ही उन्होंने बड़ी आत्मीयता से हमें आशीर्वाद के रूप में अपने सर पे हाथ रखा, जैसे ही उन्होंने हाथ रखा तो हमने माता जी से पूछ पड़ा, माता जी आप क्या आप इस यात्रा के विषय में जानती कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो माता जी ने कहा बेटा ज्यादा कुछ तो नहीं जानती लेकिन अवश्य ये राम का काज है जो प्रभु हनुमान जी आप लोगों के माध्यम से करा रहे हैं, आप इसमें मोदी जी का सहयोग करिएगा और कहीं ना कहीं हम सबके साथ जो मिलकर चल रहे हैं उसमें मोदी जी ने आज हम लोगों को अपने घर से, बेटा हम घूंघट डाल के रहते थे, आज घर से जो आगे आकर मंदिर आ पा रहे हैं, आज सामने नेतृत्व कर पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मोदी जी का किया हुआ एक वातावरण निर्मित हुआ है महिलाओं के लिए, और इस वातावरण को निर्मित करने में वाकई में आज की सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं, इस सरकार में एक भावुक पल भी उन्होंने बताया कि पहले हमारे घर की आर्थिक स्थिति भी बेटा इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं हमको थोड़े थोड़े चीजों में आज जो सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है उसके चक्कर हमने पुनः शीश उठाकर चढ़ना सीख पाया है, और हमारे यहाँ स्वयं पूरे जो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष की जो नेतृत्व करता है आज स्वयं एक हमारी रानी कुशवाहा दीदी कर रही है, जिनके नेतृत्व में वास्तव में एक महिला को, कम उम्र की महिला को इतना बड़ा नेतृत्व देना भी एक उदाहरण योग्य है, ऐसा करके उन्होंने एक दो एग्जाम्पल भी रखे, इसी एग्जाम्पल के दौरान उन्होंने बताया भी कि मुझे भी कहीं ना कहीं लाडली बहना योजना के अंतर्गत शिवराज मामा जैसे एक परिवार में रहने का मौका मिला है, इसके लिए भी मैं शासन की बहुत बहुत आभारी हूँ।
1: तो आप लोगों ने सैकड़ों
0: और
1: किलोमीटर की यात्रा कर ली है और इस
0: जी जी
1: दरमियान कई जगह लाभार्थी सम्मेलन भी हुए हैं, आप अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से भी बात कर रहे हैं,
0: बिल्कुल,
1: इन जनरल जो
0: तो
1: युवा
0: एक
1: पीढ़ी
0: अनुभव
1: है, युवा पीढ़ी को इन सारी चीजों की कितनी जानकारियां हैं, क्योंकि आज जो युवा पीढ़ी है
0: हाँ
1: वो तो हम जब आए उसके पहले तो वो कोई 4 साल का होगा, कोई 10 साल का होगा, कोई 12 साल का होगा, उसको उस समय का कुछ मालूम नहीं होगा, तो अभी जब युवाओं से बात करते हो तो उनको पता चलता है कितना बड़ा बदलाव आया है।
0: हाँ जी, एक वार्तालाप, मेरी स्कूल की कुछ बहनें वहां पर वंदे मातरम गीत करने आई हुई थी, उनसे जब मैंने संवाद किया कि बहन ये वंदे मातरम गीत के विषय में आपका क्या मनो ध्यान है, क्योंकि वो बड़ा भाव विभोर होकर वंदे मातरम को अंदर से गा रही थी, तो उन्होंने बड़ी शालीनता से कहा कि भैया मेरे यहाँ पिताजी जब भी मैं स्कूल से वंदे मातरम सीख के आती घर पे उनको बताती तो वो थोड़ा दुखित होते थे।
2: ऑलराइट, ऑल द क्रूशियल अपडेट्स आर लाइंड अप फॉर यू आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, डू स्टे ट्यून्ड टू द ब्रेकफास्ट शो।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: The ideas, the issues, the questions that matter. NDTV Yuva, Young Voices, Bold Dialogues, 28 September 2026.
1: It takes years to build your competitive edge.
2: On the golf course, it can disappear in a single stroke.
3: Because the course plays no favorites.
1: It only cares about your last shot.
0: After the grand success of the first edition, India's premier golf pro-am is back. Where the best in golf meet the finest names in business. The NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am. Tee-off, 3rd October. Kutub Golf Course, Delhi. The biggest defense lineup. Defense Minister Rajnath Singh, Defense Secretary Rajesh Kumar Singh, Chief of Defense Staff General NS Raja Subramani, Army Chief General Dheeraj Seth, Navy Chief Admiral Swaminathan, Air Marshal Tejpal Singh. India's top military and strategic minds on one mega platform. NDTV Defence Summit, 27 September, New Delhi.
4: Launch control, 0 to 100.
5: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
6: This car makes no sense, yet it makes every sense.
7: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
5: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
8: Hello and welcome to Apple Park. I am so thrilled to be here today. Every day, people around the world rely on our products.
9: Siri AI can find what you need and get more done than ever. And it already works seamlessly with over 300,000 apps.
10: NDTV's big splash at Apple event. NDTV at Apple's biggest upgrade. NDTV app in Apple Global Showcase. NDTV makes it to the world's biggest tech moment. NDTV app is the most trusted. NDTV, when it really matters.
0: A generation with questions.
11: The starry and the whole glamorous side of it.
12: As I said, like, I can't empathize with it.
0: Unconventional.
13: I feel blessed. As long as the work is going on, I'm happy.
0: Unapologetic. Unafraid of change. Ready to challenge.
14: Aspirational.
0: The ideas. The issues.
15: You really are.
0: The young view.
15: Public perception.
0: NDTV Yuva. 28 September 2026. Only on the NDTV network.
16: Dar Swast Parivar.
1: Welcome back. U.S. President Donald Trump welcomed President Xi Jinping to the White House for a lavish state summit Thursday. The subject of Taiwan once again expectantly came up during the bilateral meeting in which Xi urged the U.S. to oppose Taiwan independence. The move has left some U.S. allies in Asia and even some Republicans concerned that Trump may be tempted to soften Washington's support for Taipei in exchange for economic wins with China. Trump, meanwhile, has touted his truly great friendship with Xi and said the two powers had made strides on trade since the U.S. leader's trip to China in May. Xi reciprocated but stressed on greater communication, cooperation and peaceful coexistence. The leaders have now moved to a state dinner in the White House some time back with a guest list that includes major U.S. business leaders like Elon Musk, Jeff Bezos, Sam Altman and more. The summit occurring during Xi's first visit to Washington is more than a decade, is the second meeting of the two leaders this year.
17: 中美两个大国合则两利，斗则俱伤。中美不必讳言竞争，但竞争应该是良性的、有边界的、
14: 应该是你追我赶的赛跑，而不是你输我赢的角斗。
17: First Lady Melania Trump talked about new chapter in the relationship. Indeed, the two countries, two leadership have multiple times talked about that. But there are multiple sticking points. Taiwan is one of them. Trade and tariff is another one of them. The fierce competition that the two countries are having in the AI field, artificial intelligence, is the third point that we can mention about. The two countries have also differences about how to approach the war in Iran, Ukraine. China has already expressed its concerns about how U.S. Operated in Venezuela. And U.S. has said this part of the sphere, no one can have an influence over that. So those are the major issues that I haven't seen any resolution or any statements coming out from either side on these major issues.
1: The other top international story, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu delivered a defiant speech at the United Nations General Assembly in New York Thursday. Walking in with a pager in hand, the Israeli leader targeted Hezbollah right off the bat. But he did not stop there. There's a lot more that came after. We bring you all that you need to know in this report by NDTV World.
18: You remember the beepers? Remember these things? Remember them? Yeah.
19: A six-hour visit, a 40-minute address, and a fresh war of words from the UN podium. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu used his address at the UNGA in New York to mount a forceful defense of Israel, taking aim at Iran, Gaza war accusations, and New York Mayor Zohran Mamdani. Netanyahu began with Iran, branding its leadership a murderous dictatorship and predicting its eventual fall.
18: Ladies and gentlemen, 14 years ago, I stood on this podium and I drew a red line. I vowed to prevent Iran's murderous dictatorship from developing atomic bombs. I want you to listen to my words carefully. One day, and it may not be far away, the Iranian people will be free. Their murderous regime will be toppled by its lies, by its corruption, by its cruelty.
19: Netanyahu then turned to the most serious accusation facing Israel, allegations of genocide in Gaza. He rejected the charge outright, calling it the greatest lie of the century.
18: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century.
19: And then came his direct clash with Zohran Mamdani. Netanyahu accused the New York mayor of trying to prevent him from addressing the UN and said he would not be silenced.
18: Thank you very much. Mr. Mamdani, you tried to stop me from coming here. You tried to silence me. Well, you can't silence me. You can't silence the truth. And here's the simple truth. Here's the simple truth. Israel didn't commit genocide. Israel prevented genocide. And that's exactly what Mr. Mamdani's Hamas buddies would have done to us had we not stopped them.
19: Netanyahu's remarks triggered strong reactions inside and outside the UN. Several delegates walked out as he began speaking, while demonstrators gathered outside the UN headquarters ahead of his address. Speech comes as Netanyahu faces growing international criticism over Israel's conduct of the war in Gaza and mounting political pressure at home. His message was defiant, but whether it can change Israel's increasingly fractured relationship with the international community remains to be seen. Bureau report for NDTV World.
18: Try to stop me from coming here.
1: A golden day for Indian shooting as Suruchi and Kamaljeet win 10-meter air pistol gold and set an Asian Games record. My colleague Rika has filed this exclusive conversation with the gold medalists.
20: इस वक्त हमारे साथ हैं कमलजीत और सुरुचि जिन्होंने आज का गोल्ड मेडल लिया है इन 10-meter एयर पिस्टल. पहले तो ये बताइए कि इंडिविजुअल में मेडल नहीं आया, उस बात की दुख की, लेकिन आज जो मेडल आया इससे क्या मतलब सेंस ऑफ रिलीफ, कैसे आप इमोशनली कैसे इसको प्रोसेस कर रहे हैं?
21: मैम कल मेरा मैच था तो मैम वो मैच भी ठीक था, इतने मतलब ऐसा ख़राब नहीं था, पर मैंने थोड़ा सा मेरे तरफ से बीच में थोड़ा सा ख़राब कर दिया था. उसलिए एक पॉइंट से रह गया था मैं फाइनल में। तो कल तो थोड़ा बहुत ज़्यादा सैड था कि क्या ही होगा, क्योंकि कोई वो नहीं था मेडल वगैरह कुछ भी। तो ये था कि खाल याद तो घर आना पड़ेगा, थोड़ी सी थी मैम मायूसी सी। फिर सर ने बताया कि मिक्स टीम में नाम आ गया, तो मैं को अब तो एक मौका और है मतलब इसका भी मेडल का, तो इसमें मैं अपना बेस्ट करूँगा। और मैम किया तो आ गया मैं मेडल।
20: मैंने सुना कि कल रोना धोना भी हुआ क्योंकि आपने मेडल मिस कर दिया।
21: मैम वो तो इमोशंस तो मैम सब में होते हैं, मेरे में अंदर अंदर भी है थोड़े बहुत। मैम थोड़ा हर्ट हुआ था, मेरे को ऐसा लगा था कि मैं आ जाऊँगा फाइनल्स में, पर मैम वो रह गया तो इसलिए थोड़ा सा हर्ट हुआ।
20: कमल जी आप लास्ट मोमेंट में टीम में आए, लास्ट मोमेंट में टीम में आके प्रिपेयर करना, मेडल दिलाना कितना डिफिकल्ट होता है?
21: प्रिपेयर तो मैम रहते ही हैं क्योंकि इंडिविजुअल मैच इससे भी ज़्यादा वो रहता है, मतलब टफ। उसमें 60 शॉट रहते हैं, इसमें 30 शॉट है, तो प्रिपेयर तो मैम रहते ही हैं। तो ये था कि बस मेरे को अच्छा करना है, अपनी तरफ से गलती नहीं करनी कोई भी। थोड़ी बात हुई पर वो इतनी वो नहीं हुई ज़्यादा।
20: सुरुचि आपने इस कमबैक को कैसे स्ट्रेटेजाइज किया है?
2: इस कमबैक के असली हकदार मेरे कोच और मेरी मम्मी हैं, जिन्होंने मेरा दिमाग रीसेट करने में मेरी बहुत बहुत ज़्यादा मदद करी है। वरना मैं एकदम इस वाले मैच में भी लास्ट मैच का फील लेती रहती और मैं ये इस मैच में भी अपना परफॉर्म नहीं कर पाती।
20: तो लास्ट मैच के बाद आप भी काफ़ी मायूस हो गए थे?
2: बहुत बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने इतना स्कोर कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था।
20: सुरुचि आप एक बहुत ही मशहूर फैमिली से आते हैं, मैंने सुना कि डेफ ओलंपिक मल्टीपल डेफ ओलंपिक चैंपियन जो कि गुंगा पहलवान है आपके फैमिली मेंबर है, तो लगता है कि वो ओलंपिक का लेगेसी आपको कैरी फॉरवर्ड करना है?
2: हाँ मुझे लगता है कि मुझे उनकी तरह करना है, बिकॉज इज माई ताऊजी और मुझे ताऊजी के जैसा बनना है, मेडल लेके आने हैं देश के लिए।
20: और आप शुरू में शूटर नहीं थे, आप शायद रेसलिंग से शुरू किए और शूटिंग में आए, टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट दैट जर्नी।
2: पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं रेसलिंग में भी कैसे गई थी, क्योंकि जब मैं व्हेन आई वाज बोर्न मेरे पापा चाहते थे कि मैं कोई ना कोई स्पोर्ट्स पर्सन तो बनूँ, क्योंकि वो भी कोई स्पोर्ट्स करना चाहते थे बट वो नहीं कर पाए उनके टाइम के हिसाब से। तो उन्होंने मुझे रेसलिंग शुरू किया, रेसलिंग में मुझे कुछ ही महीनों में मुझे कलरबोन की इंजरी हो गई, तो फिर पापा ने ऐसा स्पोर्ट ढूंढा कि जिसमें इंजरी भी नहीं होगी और बस इतनी मेहनत नहीं होगी जितनी रेसलिंग में होती है, इतना पसीना वो बस कुछ टाइम के लिए होगा पसीना, बस पूरा मेंटल गेम। तो फिर पापा ने शूटिंग देखी, उन्होंने मुझे दिखाया तो मुझे देख के बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा पिस्टल चलाना, तो मैंने बोला हाँ तो मैं शूटिंग ही करूँगी।
20: और आपके बारे में मैं पढ़ रही थी कि आप 2026 में अपने आप को अल्टीमेटम दिया था कि अगर कुछ बड़ा ना हो जाए तो आप शूटिंग छोड़ देंगे। समरेश जी मुझे कह रहे थे, कल भी आप बोल रहे थे शूटिंग छोड़ देंगे, तो अब क्या आप क्या टारगेट सेट कर रहे हैं?
21: टारगेट तो मैम ओलंपिक ही है गोल्ड। तो मैम शूटिंग छोड़ने की ये थी बात कि मैम कोशिश बहुत साल से कर रहा हूँ तो कुछ हो नहीं रहा था, और मैम मैंने ये नहीं कहा था कि मैं शूटिंग छोड़ दूँगा, मैंने ये कहा था कि मैं कोई जॉब करूँगा, मतलब शूटिंग के अलावा भी, और शूटिंग पार्ट टाइम में करूँगा। तो मैम अब जब सब कुछ ठीक हो रहा है तो मैम अब तो शूटिंग ही करनी है।
20: फाइनेंशियल हार्डशिप्स के वजह से, किस चीज़ की वजह से आप जॉब करना चाहते
21: हैं? सब चीज़, मतलब फाइनेंशियल भी, और मैम अभी मेरी एज भी हो रखी है 23 का हो गया, तो प्रेशर भी थोड़ा रहता है कि फैमिली भी मतलब देखनी है। मैं घर पर थोड़ा वो हूँ बड़ा, तो मेरे को ही करना होता था, और घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं है कि, मतलब ठीक है पर इतनी अच्छी नहीं है कि मैं शूटिंग ही करे जाऊँ, मतलब बगैर कोई जॉब वॉब के। तो इसलिए फिर मैंने सोचा था कि कोई जॉब भी करूँ साथ साथ, तो अब जॉब भी मिल जाएगी, अब शूटिंग तो हो ही रही है।
20: एक आखिरी सवाल, आपको नेक्स्ट टारगेट क्या है? आप ऑलरेडी वर्ल्ड नंबर 2 है एयर पिस्टल में।
2: अब मेरा नेक्स्ट टारगेट नेक्स्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, नेक्स्ट मैच नेक्स्ट टारगेट,
20: एंड ज़रूर ओलंपिक मेडल जीतना, ओलंपिक गोल्ड जीतना। ये गोल्ड मेडल आप दिखा दो एनडीटीवी के दर्शकों को, दिस इज़ आवर सेकंड गोल्ड मेडल, ये हमारा सेकंड गोल्ड मेडल है इस कंपटीशन से, बेहद कांग्रेचुलेशंस आप दोनों को।
1: And that's all we have time for in the 12 o'clock Breaking Ground edition. I'll be back with news and headlines in moments from now, where our top focus will continue to be on the protests against the Chief Election Commissioner, Gyanesh Kumar.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: फॉरवर्ड करना है?
1: हाँ, मुझे लगता है कि मुझे उनकी तरह करना है, बिकॉज इज माई ताऊ जी, और मुझे ताऊ जी के जैसा बनना है, मेडल लेके आने देश के लिए।
0: और आप शुरू में शूटर नहीं थे, आप शायद रेसलिंग से शुरू किए और शूटिंग में आए, टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट दैट जर्नी।
1: पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं रेसलिंग में भी कैसे गई थी, क्योंकि

0: शूटिंग छोड़ने की ये थी बात कि मैम कोशिश बहुत साल से कर रहा हूँ तो कुछ हो नहीं रहा था। और मैम मैंने ये नहीं कहा था कि मैं शूटिंग छोड़ दूँगा, मैंने ये कहा था कि मैं कोई जॉब करूँगा, मतलब शूटिंग के अलावा भी, और शूटिंग पार्ट टाइम में करूँगा। तो मैम अब जब सब कुछ ठीक हो रहा है तो मैम अब तो शूटिंग ही करनी है।
1: फाइनेंशियल हार्डशिप्स की वजह से? किस चीज़ की वजह से आप जॉब करना चाहते हैं?
0: सब चीज़, मतलब फाइनेंशियल भी, और मैम अभी मेरी एज भी हो रखी है 23 का हो गया, तो प्रेशर भी थोड़ा रहता है कि फैमिली भी मतलब देखनी है। मैं घर पे थोड़ा वो हूँ बड़ा, तो मेरे को ही करना होता था। और घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं है कि, मतलब ठीक है पर इतनी अच्छी नहीं है कि मैं शूटिंग ही करे जाऊँ, मतलब बगैर कोई जॉब वॉब के। तो इसलिए फिर मैंने सोचा था कि कोई जॉब भी करूँ साथ साथ, तो अब जॉब भी मिल जाएगी, अब शूटिंग तो हो ही रही है।
1: एक आखिरी सवाल, आपको नेक्स्ट टारगेट क्या है? आप ऑलरेडी वर्ल्ड नंबर 2 है एयर पिस्टल में।
2: अब मेरा नेक्स्ट टारगेट नेक्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप है, नेक्स्ट मैच, नेक्स्ट टारगेट,
1: एंड ज़रूर ओलंपिक मेडल जीतना, ओलंपिक गोल्ड जीतना। ये गोल्ड मेडल आप दिखा दो NDTV के दर्शकों को। दिस इज़ आवर सेकेंड गोल्ड मेडल, ये हमारा सेकेंड गोल्ड मेडल है इस कॉम्पिटिशन से। बेहद कॉन्ग्रेचुलेशन आप दोनों को।

0: But in the end, all decisions were unanimous. But take a look at those protests that are underway in multiple cities: Delhi, Jammu, Kolkata, Lucknow, Dehradun, Guwahati, Patna, and Chandigarh. Congress has also put up posters of Gyanesh Hatao, Chunav Aayog Bachao in Delhi. Opposition leaders are upping the ante, demanding an impeachment of the chief election commissioner and action against him. Rahul Gandhi, in a press conference yesterday, accused Gyanesh Kumar of acting against India, demanding his resignation. Also, the Cockroach Janta Party has issued an ultimatum that if the CEC will not resign, they will begin a nationwide protest. The BJP hit back with its own barb. The BJP claimed that the Congress leaders in Kerala love SIR and that they'd also hailed the process. Meanwhile, a PIL has been filed against the Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar in the Supreme Court.
1: Well, the Indian Youth Congress is holding a dharna pradarshan against the CEC Gyanesh Kumar. Today, in fact, they were planning to march towards the Election Commission office to gherao it. But here we are showing you dramatic visuals just ahead of that, because this entire area, which is just meters away from their office, has been barricaded. There is huge deployment of security forces on the other side.
2: मैजिक शो चल रहा है हमारे देश में प्रजातंत्र के खिलाफ. प्रजातंत्र को कैसे तार तार किया जाए, हमारी वोट चोरी कैसे करी जाए. अब ज्ञानेश कुमार देश छोड़ के नहीं भाग सकता. जब तक देश में रहेगा या तो जेल में जाएगा, और नहीं तो हम उसका विरोध करते रहे.
1: इस्तीफा मांग रहे
2: हैं. बिल्कुल इस्तीफा होना चाहिए. अगर वोट और वोट में खोट हो जाएगा तो बचेगा क्या.
1: So as you heard here, the Indian Youth Congress making it very clear that the protest on the ground will continue until unless there is a resignation that is given by the Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar. We are expecting that after this as well, you know, if they continue, the Indian Youth Congress workers are likely to be detained from this spot itself. But the Indian Youth Congress goes on to say that until resignation given by the Chief Election Commissioner, these kinds of protests are going to continue. So certainly with these Pan India protests, the Congress is upping its ante against the Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar. Remains to be seen that how the situation pans out in the coming days.
2: Patna police is now using water cannon actually to disperse the protesting mob of the Congress. You can see out here the water cannon guns are being used to disperse the Congress protesters who were trying to march towards the Congress party headquarter here, the election commission office out here, to ensure that to protest against the CEC Gyanesh Kumar. You can see few of the injured Congress workers out here. The commotion has started here, and few of the Congress workers have even got injured. The water cannon is being used by the Patna police to disperse the protesting mob of Congress workers, and this protest is against the CEC Gyanesh Kumar on the issue. And this is a nationwide protest, so this is a protest against CEC Gyanesh Kumar. You can see out there the Congress workers, there in the large numbers, and the water cannon gun is being used by the Patna police to disperse the mob of the Congress protesters.
3: You can see here Gaurav Gogoi been detained along with other Congress activists. In fact, there have been dramatic scenes here outside the state Congress headquarters here when Gaurav Gogoi and other Congress leaders tried to break open the barricade. They broke open the barricade and then police have detained them along with other activists during this protest that Congress is holding across the country.
0: All right, so those were the protests that are taking place in different parts of the country. Now, lots of political reactions also coming in. Home Minister Amit Shah hit out at Rahul Gandhi, while Priyanka Gandhi Vadra said the Chief Election Commissioner cannot continue.
4: 6 rajyon mein 12 semiconductor ki pariyojnaye, 1.64 lakh crore se zyada nivesh aur capital expenditure hamara record todkar 12.2 लाख करोड़ को पार कर गया है. ये भारत के विकास की नींव का परिचायक. फिर भी कुछ लोगों को ये डेड इकोनॉमी लगती है. मैं उनको कहता हूं कि जिनकी सोच ही डेड हो उनको वाइब्रेंसी नहीं दिखाई पड़ती है, उनको सब जगह डेड ही डेड दिखाई पड़ती है।
5: सॉरी, दैट्स अ वेरी स्टेल एंड वीक स्टोरी। देयर आर फैक्ट्स, देयर इज एविडेंस, इट इज देयर फॉर द होल कंट्री टू सी। माय ब्रदर हैज शोन इट इन मेनी डिफरेंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ही हैज पुट द एविडेंस फॉरवर्ड। Now it is very clear, 13 crore voters have been deleted. This is a lame excuse and the BJP should stop making lame excuses. If they are meddling with our elections and if their leadership is making the election commission do this, then it is an act of treason and they should be aware of it. If they are doing it, then why can't they say it? What are they scared of? They are doing an illegal act. How many years has it been that they have been rigging elections? Naturally, they are so overconfident all the time.
6: देखिए, आज ये हर नागरिक को सोचना चाहिए कि क्या भारत लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि आज केंद्रीय निर्वाचन आयोग के पास एक ही काम है कि वोटर लिस्ट को सुरक्षित रखे, और वो भी काम नहीं कर रहे, वो लोकतंत्र पे आक्रमण कर रहे हैं। अगर भारत में लोकतंत्र रहेगा नहीं तो गरीब के वोट का क्या मूल्य रहेगा?
7: हमारे ज्ञानेश गुप्ता, अब वो गुप्ता जी का एक गुप्त मिशन चल रहा है। वो गुप्त मिशन अब गुप्त नहीं रहा, अब वो गुप्त मिशन सार्वजनिक हो गया, सबके सामने आ गया। उन्होंने, उनको लगा कि वो गुप्त मिशन लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा। वो मोदी जी पूछते ना एक्स्ट्रा 2AB, चुनाव आयोग में एक्स्ट्रा 2AB, संधु जी और जोशी जी आ गए। वो एक्स्ट्रा 2AB ने गेम बिगाड़ दिया, सब कुछ सामने आ गया कि कैसे लोगों को वोट के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। लगभग आधे दिल्ली वालों के वोट डिलीट कर दिए गए। गुप्ता जी, सिट डाउन, इट्स डन ब्रो, अप्रूवर बन जाइए, बच जाइए, नहीं तो ट्रायल फेस करने के लिए तैयार हो जाइए।
8: You'll be protesting against the Election Commission tomorrow. You're demanding that Mr. Ganesh Kumar resign. They are, of course, defending the decisions that were taken, sir.
9: See, entire country is ashamed of the system. We all have lost faith in the system. What Election Commission is doing? That is not. I am not telling. The members of the Election Commission is telling. The Prime Minister should guide him. It is better the Prime Minister only should advise and take his resignation. And we have to, because it is not a small issue, it is the voice of the people, voting of the people, life of the people. Everyone who lives in this country have to have a fair, free vote, and he should form his own government at the choice of the voter. It is not the choice of a political party or the election commission.
10: सबसे पहले political parties ने ये बात रखी थी कि चुनाव आयोग को और इलेक्शन कमिश्नर जो भी हैं, जिन्होंने इस तरह का भेदभाव किया है, संविधान और नियम कानून का उल्लंघन किया है, किसी की कठपुतली बने वो स्वयं इस्तीफा दे दें। जो भी इलेक्शन कमीशन के जो नियम उल्लंघन किए हैं उसके खिलाफ जो लोग खड़े हैं, हम तो पहले से ही लड़ रहे हैं, हम लोगों ने तो फेस किया है। ये जो बाई इलेक्शन जिस तरह से इन्होंने लूटे थे, मैं तो कफन लेकर के लोकसभा में गया था, अगर आपको याद हो, क्योंकि कफन लेकर के इसलिए गए थे ये बताने के लिए कि चुनाव आयोग मर गया है।
11: देखिए, राहुल गांधी जी ने कल जो भी बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीसी की वर्किंग के बारे में, वो पूरा झूठ का पुलिंदा है। किसी भी तरह की सत्यता उनमें नहीं है, ना वो प्रमाणित कर सकते हैं। झूठ बोलते हैं और वातावरण खराब करते हैं और भाग जाते हैं।
12: नहीं पता, मैं सरकार का हिस्सा होने के नाते मैं किसी को डिफेंड नहीं करूंगा। ऐसे में एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग। ऐसे में अगर चुनाव आयोग के ऊपर ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं तो मैं, मुझे उस बात से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। विपक्ष का काम है राजनीति करना, आप अगर आरोप नहीं लगाएंगे तो आप अपनी राजनीति को साधेंगे कैसे? पर ऐसे में विपक्ष को संतुष्ट कराने के लिए सीईसी को नहीं, बल्कि जनता को विश्वास में लेने के लिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है ये ऐसे में अगर चुनावी प्रक्रिया के ऊपर ही लोगों का विश्वास या

0: The 20th Asian Games are officially underway in Aichi, Nagoya in Japan. For the next 16 days, this is where India's sporting dreams will play out.
1: We are in the happy hunting ground with the athlete I am sitting with right now, PV Sindhu.
2: 32 years and no medal. Can India's weightlifting contingent give us that elusive medal?
3: Gold rush on the field.
1: Go for glory, only on NDTV.
0: It takes years to build your competitive edge. On the golf course, it can disappear in a single stroke.
4: Because the course plays no favourites.
0: It only cares about your last shot.
5: After the grand success of the first edition, India's premier golf pro-am is back, where the best in golf meet the finest names in business. The NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am. Tee-off, 3rd October. Kutub Golf Course, Delhi.
6: There is a very public disagreement at the top of the Tata Group once again. And this time it is over who should lead Tata Sons and who ultimately has the authority to decide. We will hear two sharply different interpretations of what has happened, what the law says, and where this battle goes next. Everyone in this country who tracks corporate governance, boardroom politics, India Inc., even politics, will be tracking this gladiatorial contest. Dr. Abhishek Singhvi on the one side, representing the Tata Trust, versus Harish Salve, representing N. Chandrasekaran. We start with Dr. Singh.
7: Here what has happened, unfortunately, is now you cannot have, you know, have this famous movie called Runaway Jury. You can't have a runaway board which decides things with the active disagreement of 66% shareholder, which is your second.
6: Suggested that Chandra's reappointment and the broader push, yes, to list Tata Sons are separate issues. But these are now two major fault lies running through Tata Sons, and Noel Tata has opposed both.
7: Rahul, as I said, it is a very major principal issue, a matter of principle of shareholder owner primacy. It is not about Noel Tata. He's not an individual shareholder. It is not even about Chandra. He's not an individual shareholder. It is about the primacy of a 66% collectivity called a trust. That's the shareholder owner. Now, if you were to accept the principle that a runaway jury, as the film is called, or a runaway board, was to act independently of its 66% owner, then you would have disastrous consequences for corporate governance across the country.
6: How can a board take a decision as fundamental as choosing its chairman against the wishes of a shareholder that owns two-thirds of the company?
8: There are bigger issues at play, and let's not miss the wood.
9: Welcome back. Well, let's get to the latest from the Asian Games and some good news there. It was a golden day for Indian shooting as Suruchi and Kamaljeet won the gold in the 10-meter air pistol event. Take a look. NDTV's Rika Roy spoke to them.
10: इस वक्त हमारे साथ है कमलजीत और सुरुचि, जिन्होंने आज का गोल्ड मेडल लिया है इन 10 मीटर एयर पिस्टल. पहले तो ये बताइए कि इंडिविजुअल में मेडल नहीं आया, उस बात की दुख की, लेकिन आज जो मेडल आया, इससे क्या आप, मतलब सेंस ऑफ रिलीफ, कैसे आप इमोशनली कैसे इसको प्रोसेस कर रहे हैं?
11: मैम, कल मेरा मैच था, तो मैम वो मैच भी ठीक था, इसने मतलब ऐसा ख़राब नहीं था, पर मैंने थोड़े सा मेरे तरफ से बीच में थोड़ा सा खराब कर दिया था, इसलिए एक पॉइंट से रह गया था मैं फाइनल में. तो कल तो थोड़ा बहुत ज़्यादा सैड था कि क्या ही होगा, क्योंकि कोई वो नहीं था मेडल वगैरह कुछ भी, तो ये था कि खाली हाथ घर आना पड़ेगा, थोड़ी सी थी मैम मायूसी सी. फिर सर ने बताया कि मिक्स टीम में नाम आ गया, तो मैं अब तो एक मौका और है, मतलब इसका भी मेडल का, तो इसमें मैं अपना बेस्ट करूँगा, और मैम किया तो आ गया मैं मेडल.
10: मैंने सुना कि कल रोना धोना भी हुआ क्योंकि आपने मेडल मिस कर दिया.
11: मैम वो तो इमोशंस तो मैम सब में होते हैं, मेरे अंदर भी है थोड़े बहुत. मैम थोड़ा हर्ट हुआ था, मेरे को ऐसा लगा था कि मैं आ जाऊँगा फाइनल्स में, पर मैम वो रह गया, तो इसलिए थोड़ा सा हर्ट हुआ.
10: कमल जीत, आप लास्ट मोमेंट में टीम में आए, लास्ट मोमेंट में टीम में आके प्रिपेयर करना, मेडल दिलाना कितना डिफिकल्ट होता है?
11: प्रिपेयर तो मैम रहते ही हैं, क्योंकि इंडिविजुअल मैच इससे ज़्यादा वो रहता है, मतलब टफ, उसमें 60 शॉट रहते हैं, इसमें 30 शॉट है, तो प्रिपेयर तो मैम रहती हैं, तो ये था कि बस मेरे को अच्छा करना है, अपनी तरफ से गलती नहीं करनी कोई भी, थोड़ी बात हुई पर वो इतनी वो नहीं हुई ज़्यादा।
10: सुरुचि, आपने इस कमबैक को कैसे स्ट्रेटजाइज किया है?
12: इस कमबैक के असली हकदार मेरे कोच और मेरे मम्मी हैं, जिन्होंने मेरा दिमाग रीसेट करने में मेरी बहुत बहुत ज़्यादा मदद करी है, वरना मैं एकदम इस वाले मैच में भी लास्ट मैच का फील लेती रहती और मैं ये इस मैच में भी अपना परफॉर्म नहीं कर पाती।
10: तो लास्ट मैच के बाद आप भी काफ़ी मायूस हो गए थे?
12: बहुत बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने इतना स्कोर कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था।
10: सुरुचि, आप एक बहुत ही मशहूर फैमिली से आते हैं, मैंने सुना कि डेफ ओलंपिक, मल्टीपल डेफ ओलंपिक चैंपियन जो कि गुंगा पहलवान है, आपके फैमिली मेंबर है, तो लगता है कि वो ओलंपिक का लेगेसी आपको कैरी फॉरवर्ड करना है?
12: हाँ, मुझे लगता है कि मुझे उनकी तरह करना है, बिकॉज ही इज माई ताऊजी और मुझे ताऊजी के जैसा बनना है, मेडल लेके आने हैं देश के लिए।
10: और आप शुरू में शूटर नहीं थे, आप शायद रेसलिंग से शुरू किए और शूटिंग में आए, टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट दैट जर्नी।
12: पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं रेसलिंग में भी कैसे गई थी, क्योंकि जब मैं व्हेन आई वाज बोर्न, मेरे पापा चाहते थे कि मैं कोई ना कोई स्पोर्ट्स पर्सन तो बनूँ, क्योंकि वो भी कोई स्पोर्ट्स करना चाहते थे, बट वो नहीं कर पाए उनके टाइम के हिसाब से, तो उन्होंने मुझे रेसलिंग शुरू किया। रेसलिंग में मुझे कुछ ही महीनों में मुझे कोलरबोन की इंजरी हो गई, तो फिर पापा ने ऐसा स्पोर्ट ढूंढा कि जिसमें इंजरी भी नहीं होगी, और बस इतनी मेहनत नहीं होगी जितनी रेसलिंग में होती है, इतना पसीना, वो बस कुछ टाइम के लिए होगा पसीना, बस पूरा मेंटल गेम। तो फिर पापा ने शूटिंग देखी, उन्होंने मुझे दिखाया, तो मुझे देख के बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा पिस्टल चलाना, तो मैंने बोला हाँ मैं शूटिंग ही करूँगी।

0: और आपके बारे में मैं पढ़ रही थी कि आप 2026 में अपने आप को अल्टीमेटम दिया था कि अगर कुछ बड़ा ना हो जाए तो आप शूटिंग छोड़ देंगे। समरेश जी मुझे कह रहे थे, कल भी आप बोल रहे थे शूटिंग छोड़ देंगे, तो अब क्या आप क्या टारगेट सेट कर रहे हैं?
1: टारगेट तो मैम ओलंपिक ही है, गोल्ड। तो मैम शूटिंग छोड़ने की ये थी बात कि मैम कोशिश बहुत साल से कर रहा हूँ तो कुछ हो नहीं रहा था। और मैम मैंने ये नहीं कहा था कि मैं शूटिंग छोड़ दूँगी, मैंने ये कहा था कि मैं कोई जॉब करूँगा, मतलब शूटिंग के अलावा भी, और शूटिंग पार्ट टाइम में करूँगा। तो मैम अब जब सब कुछ ठीक हो रहा है तो मैम अब तो शूटिंग ही करनी है।
0: फाइनेंशियल हार्डशिप्स की वजह से, किस चीज़ की वजह से आप जॉब करना चाहते हैं?
1: सब चीज़, मतलब फाइनेंशियल भी, और मैम अभी मेरी एज भी हो रखी है 23 का हो गया, तो प्रेशर भी थोड़ा रहता है कि फैमिली भी मतलब देखनी है। मैं घर पे थोड़ा वो हूँ बड़ा, तो मेरे को ही करना होता था। और घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं है कि, मतलब ठीक है पर इतनी अच्छी नहीं है कि मैं शूटिंग ही करे जाऊँ, मतलब बगैर कोई जॉब वॉब के। तो इसलिए फिर मैंने सोचा था कि कोई जॉब भी करूँ साथ साथ, तो अब जॉब भी मिल जाएगी, अब शूटिंग तो हो ही रही है।
0: एक आखिरी सवाल, आपको नेक्स्ट टारगेट क्या है? आप ऑलरेडी वर्ल्ड नंबर 2 है एयर पिस्टल में।
2: मेरा नेक्स्ट टारगेट नेक्स्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, नेक्स्ट मैच नेक्स्ट टारगेट,
0: एंड ज़रूर ओलंपिक मेडल जीतना, ओलंपिक गोल्ड जीतना। ये गोल्ड मेडल आप दिखा दो एनडीटीवी के दर्शकों को। दिस इज़ आवर सेकंड गोल्ड मेडल, ये हमारा सेकंड गोल्ड मेडल है इस कंपटीशन से। बेहद कॉन्ग्रेचुलेशंस आप दोनों को।
3: Well, that's it from me in this edition of NDTV Newsroom. Coming up ahead, Tamil Nadu Chief Minister Vijay's first statement on the Veeramani case, where he has targeted the DMK. Stay tuned.
4: Hello and welcome to Apple Park. I am so thrilled to be here today. Every day, people around the world rely on our products.
5: Siri AI can find what you need and get more done than ever. And it already works seamlessly with over 300,000 apps.
6: NDTV's big splash at Apple event. NDTV at Apple's biggest upgrade. NDTV app in Apple Global Showcase. NDTV makes it to the world's biggest tech moment. NDTV app is the most trusted. NDTV, when it really matters.
7: In the last 7 years consecutively, more young women are outnumbering young men entering our higher education system. That is how you smash patriarchy.
8: Doomsayers were doomed and India bloomed.
7: Time in history, every language at some point in time goes through certain changes. It is how a new generation speaks. You said you come from a tech city, but you did a coward. But kya hai yahan? Kya technology and tradition saath mein nahi ja sakte hai kya?
9: For the elections of 2024, the Prime Minister met gamers. What was the thought behind this? Is he actually into gaming?
7: Well, he is into political gaming, that much we can for sure say.
10: The next chapter of the NDTV Golf Pro-Am begins here. Bigger, bolder, teeing off across India. The course of champions. The conversation of leaders. The NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am. Tee off, 3rd October, Kutub Golf Course, Delhi. Voices that redraw boundaries.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है।
2: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the coolest spa at home.
3: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.
4: Hello and welcome to Apple Park. I am so thrilled to be here today. Every day, people around the world rely on our products.
5: Siri AI can find what you need and get more done than ever.
6: And it already works seamlessly with over 300,000 apps.
7: NDTV's big splash at Apple event. NDTV at Apple's biggest upgrade. NDTV app in Apple Global Showcase. NDTV makes it to the world's biggest tech moment. NDTV app is the most trusted. NDTV, when it really matters.
8: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
9: बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है, वक्त तराशता है जिसे, तो जाने क्या क्या ना करता है, जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन न बन जाए, आराम

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये ही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आकर मसाला।
5: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
6: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.
7: Hello and welcome to Apple Park. I am so thrilled to be here today. Every day, people around the world rely on our products.
8: Siri AI can find what you need and get more done than ever. And it already works seamlessly with over 300,000 apps.
9: NDTV's big splash at Apple event. NDTV at Apple's biggest upgrade. NDTV app in Apple Global Showcase. NDTV makes it to the world's biggest tech moment. NDTV app is the most trusted. NDTV, when it really matters.
10: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
11: बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है, वक्त तराशता है जिसे, तो जाने क्या क्या ना करता है। जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन न बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है, जब तक लाजवाब न बन जाए, उसे नहीं इत्मीनान है, तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है।
12: This is a world between orders, uncertain, unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
13: In the last 7 years consecutively, more

0: आप लुधियाना से?
1: जोधपुर राजस्थान से।
0: जूनागढ़ गुजरात से आया हूँ।
2: मुंबई गोरेगांव।
3: चित्तौड़गढ़ राजस्थान। कब आए?
4: हम परसों आए थे, कल हम जिम कार्पेट गए थे और कल नैनीताल हो गए, आज इधर आए।
0: कल रात को निकले, आज पहुंच गए।
1: हम कल ही आए थे ट्रेन से और अभी आज घूम के वापस निकल जाएंगे।
5: They've come from different places. Some left home last night, some have been here before. Others don't quite know what to expect. But this morning, they're all heading in the same direction.

0: been several years since the passing away of Neem Karoli Baba, but people still come here looking for him. Some knew him personally, while others have been coming here for several years now. Many others are only discovering his story now.
1: This is the destination, the holy grail that the pilgrims here seek, Kenchi Dham.
2: जीवन है आज वो बाबा जी का दिया हुआ है। मैं बाबा जी को बार बार प्रणाम करता हूँ।
3: कुछ फैमिली इशू वगैरह कुछ है तो अंदर से हुआ कि वहाँ जाके आए भगवान के, तो सारे सॉल्व हुए, इसलिए फिर हम दोनों आए।
4: मैं सबसे पहले 2019 में आया था, वो भी रैंडम प्लान बन गया था। मैं ऐसे नॉर्मल वीडियो देख रहा था इंस्टा पे, फिर वो नीम करौली बाबा की एक वीडियो आई, फिर मेरा प्लान बन गया। उसके बाद से बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मैं 18 महीने में 10 बार आ चुका हूँ।
5: पहली बार सोच रही थी आने का पर मैं नहीं आ पा रही थी। फिर मुझे गुस्सा आया बजरंगबली के ऊपर, बाबा के ऊपर। मैंने उनको एक जैसे फादर बोलते हैं वैसे उनको चिल्लाया कि आप मुझे बुलाते नहीं हो। फिर अचानक से हमारा अचानक ही प्लान बना जाने का, फिर तब से आ ही रहे हैं। तब से 6 महीने में 5 महीने में चक्कर लग जाता
6: है। स्वर्ग देखना है, ये है हमारा स्वर्ग। बोलो
1: And there lies the curious thing. They know the name, they've been told. They recognize the face, they've seen pictures. Many know the stories, they've heard it often enough. But most people who come here today could never have known the man. The mortal being known as Neem Karoli Baba died in 1973. More than half a century later, it is deep faith and blind belief that make people. Many of them born long after his death make their way here. Faith can move mountains, but the genesis of that faith is not to be found here in Kenchi. To go back to the beginning, the mountains must be removed, the direction of travel changed southwards, 362 odd kilometers towards a small village near Tundla in Uttar Pradesh. Akbarpur, this is where the story begins. It is said that one Lakshman Narayan Sharma was born here around the turn of the 20th century. The record of his early life is mostly hearsay. Much of what is known or popular comes from accounts narrated nearly 3/4 of a century later. The broad storyline that got established was about how Lakshman Narayan Sharma married young, had a family, and spent long periods away from home, traveling as a holy mendicant, a sadhu.
7: लक्ष्मी नारायण नाम था उनका, सुन गाँव का। जब बाबा बने तो लक्ष्मण दास हो गया उनका। उनके हम तो बच्चे ही थे उस समय, उनकी गोद तक मैं खेले जी। जाग बोलिए ये जो उनने अपने हाथ से ही बनवाई थी और यहाँ पर ही उनका स्थान था। जब भी आते थे ब्रह्मल से तो यहीं पर रुकते थे और यहीं पर बैठते थे, और पूरा गांव उनका इज्जत इतनी करता था कि पूरा गांव इकट्ठा हो जाता।
1: His travels, the stories go, took him to different parts of India, and along the way, he came to be known by names as transient as his stay. Then one of them stuck, Neeb Karori.

0: Farukabad district of Uttar Pradesh, there's a village called Neeb Karori. Accounts place Lakshman Narayan Sharma here for an extended period as a resident sadhu. And the name of the village became attached to the man they looked at with holy reverence, Neeb Karori Baba. The surviving images draw a simple picture. A dhoti, a blanket, people around him. The Baba did not leave much in way of his own writing. Much of what is ascribed to him is from the recollections of those who spent time with him.
1: पहली बार आप कब मिले बाबा से?
2: उस टाइम में हम बच्चे थे, मैं कक्षा 2-3 में ही पढ़ता था. ऐसा थे वो हम जैसों को जैसे हम थे. अभी ये बच्चे ही हैं, इनसे क्या बात करो ज़्यादा. और वो हंसी मजाक भी करते थे वो हमसे थे. हमसे करते थे कुश्ती लड़ो तुम बाहर से, कुश्ती लड़ो तो जो जीतेगा मैं उसको ये दूंगा, मिठाई दूंगा. हम कुश्ती लड़ते थे, हम छोटे, इससे कुछ बड़ा होगा ऐसे ही होगा.
1: जी जी. आपकी एज क्या थी जब आप पहली बार उनसे मिले थे?
3: मेरी 15 साल की उम्र थी. 1963 में प्रथम दर्शन किए.
0: For most people arriving at Kenchi, this is the destination. For the man beside us, it is a place of memory.
3: इंदर के बाद मुझे पढ़ाई के लिए हायर पढ़ाई के लिए नैनीताल आना था. मेरे लिए वहाँ पहुँचना और आसान हो गया क्योंकि बाबा महाराज कैंची में रहते थे और मैं नैनीताल से आता था, तो मेरे लिए कोई बहुत दुर्गम काम नहीं था. मैं कभी कभी पहुँच जाता था वहाँ. आज आप जितनी भीड़ देख रहे हैं इतनी भीड़ नहीं आती थी, लेकिन अच्छा वो माहौल बना हुआ था वहाँ का. बड़ा बाबा जी की महाराज जी के पास बहुत प्रसन्नतावर्धक समय रहता था. जो दिन भर करा, शाम को गाड़ी से फिर वापस नैनीताल आ गए.
1: मन्नत अपने मांगी और पूरी हुई है
4: मेरी कल. मतलब जब मैं यहाँ पहली बार आई थी ना, तो मेरी लाइफ में चेंज हुआ था. सेकेंड टाइम आई थी तो मेरी शादी हो गई, लाइक वो जो मैंने प्रे किया था वही हुआ. और थर्ड टाइम वापस आई हूँ एक और नई विश के साथ.
5: दोस्तों ने बताया था कि उत्तराखंड में नीम करोली बाबा करके महाराज है, वो चमत्कारिक महाराज है. दिसंबर 2020 में मेरा राइट किडनी का ऑपरेशन हुआ था, जिस वजह से मेरी राइट किडनी समाप्त हो गई, खराब हो गई. वही प्रॉब्लम मेरी दूसरी किडनी में 4 साल बाद शुरू हुआ. मैंने बाबा जी से प्रार्थना की, दवाई चालू की, बाबा जी से प्रार्थना की कि बाबा जी अगर दूसरी किडनी में भी यही दिक्कत आती है, यही रोग आता है, तो मुझे मुश्किल, मेरा जीना मुश्किल हो जाता है. तो बाबा जी ने मेरी प्रार्थना सुनी. 15 दिनों में मेरी जो दिक्कत थी वो मेरी दिक्कत बाबा जी ने संपूर्ण स्वस्थ करके दिक्कत मेरी दूर कर दी.
6: यही मानना था कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए. चल नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, तो वही बाबा ले अर्जी है कि चला दे, बुला दे, और क्या है.
7: जब यहाँ आए पहली बार में जो मन्नत किए थे वो पूरे होने लगी. फिर हर बार मतलब जैसे अपना एक फैमिली का मेंबर होता, मिलने के बिना नहीं रह सकते, सेम वैसे यहाँ आना स्टार्ट हो गए.
0: Like this are part of the memory surrounding Neem Karoli Baba. For those who tell them, their experience is of faith.

0: सबसे पहली बार आपको कब पता लगा?
1: जब मैं पढ़ता था, जब मैं छोटा सा था, तो हमारे स्कूल का ट्रूप आया था, तो हम छोटे बच्चों को लेके नहीं आए थे, पर जब से ही तमन्ना थी मैं बाबा के जाएं।
2: अभी जो मूवी देखा उसके बाद में बाबा का दर्शन करने का मन करा, उसके बाद इच्छा कही इमीडिएटली। लास्ट वीक मैं सब टिकट वगैरह बुक करके आज बाबा के दर्शन के लिए पहुंचा।
3: ये मेरे अंकल के थ्रू मुझे पता लगा था, उनको भी शायद रील से इंस्टाग्राम के थ्रू पता लगा था, जैसा कि फेसबुक के ऑनर सीईओ मार्क ज़करबर्ग के बारे में, तो बस वहीं से फिर हमने यहाँ पे आना चालू किया था।
4: बाबा के बारे में ऐसे पता लगा हमें कि यूट्यूब पे इंस्टा पे देखा, बाबा की महिमा सुनी, तो हम बहुत प्रभावित हुए।
5: Steve Jobs, who came here searching for Neem Karoli Baba, to Virat Kohli, the names associated with him span across generations as well as continents. Different people, different journeys, but the same strings pull each and every one of them to

0: ठीक है बेटा, हम तो बहता पानी है, कहीं भी रम जाएंगे।
1: And now, the story has found another screen. Hanuman Ansh.
2: Swami ho tum, gaadho nata Baba ji.
1: A film inspired by the life and the stories that surround the spiritual journey of Neem Karoli Baba began quietly. Then, people began turning up. A film about a Baba who died more than 50 years ago.
3: मैंने हनुमान अंश मूवी मेरे परिवार के साथ देखी है। ऐसा ही लग रहा था कि साक्षात बाबा ही हमें दिखाई दे रहे हैं, और जो अनुभूति थी वो मैं शब्दों में नहीं कह सकता।
4: मूवी देखी थी लास्ट वीक, और मैं मानता नहीं हूँ भगवान में कि कुछ होता है ऐसा, बट मूवी देखी उसके बाद पढ़ा तो लगा कि हाँ कुछ तो होगा जो इतने लोग आते हैं। तो बस
5: अभी तो ये मूवी का क्रेज है तो इतनी भीड़, इतना क्राउड है। बाकी जब मूवी नहीं थी तब इतना कुछ क्राउड नहीं था। हमने अंदर बैठ के सत्संग किया था, सुंदरकांड पाठ किया था।
6: अभी जो मूवी देखा उसके बाद में बाबा का दर्शन करने का मन करा, उसके बाद इच्छा कही।
2: सेवक हम स्वामी हो तुम।
1: द मीडियम चेंज्ड, द स्टोरी केप्ट फाइंडिंग न्यू ऑडियंसेस। And with every new audience, more people found their way here.
7: तो जी इस टाइम से सितंबर टाइम चल रहा है, ये एक तरह से ऑफ सीजन माना जाता था। काफ़ी कम भीड़ आती थी, मतलब मुश्किल से 10,000 लोग मतलब दिन में आ जाते थे, लेकिन इस टाइम पे वो देखने को मिला मूवी के बाद से काफ़ी भीड़ हो रही है।
8: महाराज जी कम्बल ओढ़े रखते थे हमेशा, तो ऑफरिंग यहाँ से पहले से भी हम लोग मतलब जैसे दिवाली वगैरह हो गया, कोई ओकेजन है वैसे हम लोग उस टाइम पे ब्लैंकेट्स वगैरह चढ़ाते हैं महाराज जी को, तो वही सारी चीज़ें नॉर्मली चलती हैं, तो पहले से ही हम लोग यहाँ पे ब्लैंकेट बेचते थे। और हाँ, दादी हमारी आज भी कहती है कि महाराज जी कहते थे कि विश लौट कर आएगा यहाँ पे, वो रियलिटी है। महाराज जी कह गए थे वो है, सच में वो चेंज हो चुका है, वो चेंज आ गया, पूरा विश लौट के कैची गया।
1: कैची हैज चेंज्ड, but the reason people come here perhaps hasn't.
9: अलग ही पीस मिल रहा है, अच्छी जगह है, और बाबा के दर्शन करके और अच्छा लगेगा, आपको आनंद प्राप्त होगा।
10: बहुत अच्छा और सुकून भरा लगता है यहाँ पे, शांति है।
11: जो लोगों ने बताया था उससे ऊपर यहाँ महसूस हुआ, बहुत ही पॉजिटिव वेव्स यहाँ मिलती है, मुझे बहुत ही अच्छा आनंद हुआ। जय सीताराम।

0: And those are the visuals of the Prime Minister attending a bhajan clubbing event in Delhi to mark the birth anniversary of Pandit Deen Dayal Upadhyay. Videos from the evening showed Prime Minister sitting in the front row of the audience while singers and musicians on stage sang devotional songs. Bhajan clubbing, remember, is a trend that blends traditional devotional music with modern concert-like setting and has found particular resonance among the youth audiences, including the Gen Z as well. It was also highlighted by the Prime Minister during his Mann Ki Baat broadcast earlier this year.
1: आप आज खुद भजन क्लबिंग में यहाँ पर पहुँचे, इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भी शिरकत की, जमकर वो झूमे, कैसे ये सारी चीज़ें देखते हैं और आपके संगीत पर प्रधानमंत्री जब यहाँ पर झूम रहे थे तो वो एहसास कैसा था?
2: देखिए, सत्य बताऊँ तो मैं बहुत लेट पहुँचा यहाँ पे और जब मैं पहुँचा तो प्रोग्राम ख़त्म हो चुका था और प्रधानमंत्री जी जा चुके थे, तो उस चीज़ का बहुत बुरा लगा कि उनको देख नहीं पाया सामने से, क्योंकि वो तो हम सब के, मतलब मैं क्या ही बोलूँगा, मेरे लिए तो वो भगवान जैसे ही हैं, क्योंकि वो देश के लिए जिस समर्पण से काम करते हैं और सबके बारे में इतना सोचते हैं, हर वर्ग के बारे में इतना सोचते हैं, तो हम तो उनसे मिलना चाहते थे, तो पहली बात तो हम पहुँच नहीं पाए, लेकिन अच्छी बात ये थी कि पूरे टाइम हम लोग वो लाइव देख रहे थे।
1: जब पीएम खुद, वो विजुअल आपने भी देखा होगा, हमने सब ने देखा, खुद यहाँ पर जब वो भजन यहाँ पर थे और वो खुद झूम रहे थे, वो एहसास, वो फीलिंग, वो कैसी थी? आप खुद, आप तो देखते हुए आ रहे थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो गाने थे वो उसी मूवी के हैं जो इस समय पूरे देश में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई।
2: बिल्कुल, देखिए क्या है कि उनका इस तरह से स्टेप लेना कि वो आए, कुर्सी पे बैठे हुए थे, अपने हाथ में कुछ इंस्ट्रूमेंट लेके बजा रहे थे, झूम रहे थे, और जिस तरह से वो ये कर रहे थे, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो बच्चों के बीच में बच्चे बन गए हैं। तो ये क्या है ना, ये एक मेरे समझ से कि एक जो एक सिद्ध संत होता है ना, वो कर सकता है, मेरे लिए तो वो सिद्ध संत जैसे ही हैं।
1: पीएम यहाँ पर खुद पहुँचे, उन्होंने आप सबके साथ इस भजन क्लबिंग को एंजॉय किया, क्या सोचते हैं उनके बारे में, कनेक्ट होने की आप सबसे कोशिश कर रहे हैं?
3: हाँ, वो अब जेन ज़ी के लिए बहुत ज़्यादा अपडेट है, मतलब इंस्टाग्राम पे भी, सोशल पे बहुत ज़्यादा अपडेट है, पहले वो रील नहीं बनाते थे, अब रील भी बनाने लग गए वो।
4: कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ एक भजन क्लबिंग के फंक्शन में आ रहे हैं, ये सब तो बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत शॉर्ट में कहूँ मोदी जी ने क्या किया, तो मोदी जी ने क्लॉकेट कर दिया, क्लॉकेट कुछ पूछू मोदी जी, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा।
5: मुझे लगता है ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि जेंजीज को माइथोलॉजी की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये क्लबिंग का कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत ही अच्छा है, और हमें नहीं पता था कि पीएम आने वाले हैं, सो व्हेन ही एंटर्ड इट वाज अ वेरी गुड मोमेंट, हम लोगों को गूज़बम्स भी आ गया, तो बहुत ही अच्छा था।
6: स्वयं हमारे प्राइम मिनिस्टर

0: And those are the visuals of the Prime Minister attending a bhajan clubbing event in Delhi to mark the birth anniversary of Pandit Deen Dayal Upadhyay. Videos from the evening showed Prime Minister sitting in the front row of the audience while singers and musicians on stage sang devotional songs. Bhajan clubbing, remember, is a trend that blends traditional devotional music with modern concert-like setting and has found particular resonance among the youth audiences, including the Gen Z as well. It was also highlighted by the Prime Minister during his Mann Ki Baat broadcast earlier this year.
1: आप आज खुद भजन क्लबिंग में यहाँ पर पहुँचे, इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भी शिरकत की, जमकर वो झूमे, कैसे ये सारी चीज़ें देखते हैं और आपके संगीत पर प्रधानमंत्री जब यहाँ पर झूम रहे थे तो वो एहसास कैसा था?
2: देखिए, सत्य बताऊँ तो मैं बहुत लेट पहुँचा यहाँ पे, और जब मैं पहुँचा तो प्रोग्राम ख़त्म हो चुका था और प्रधानमंत्री जी जा चुके थे, तो उस चीज़ का बहुत बुरा लगा कि उनको देख नहीं पाया सामने से, क्योंकि वो तो हम सब के, मतलब मैं क्या ही बोलूँगा, मेरे लिए तो वो भगवान जैसे ही हैं, क्योंकि वो देश के लिए जिस समर्पण से काम करते हैं और सबके बारे में इतना सोचते हैं, हर वर्ग के बारे में इतना सोचते हैं, तो हम तो उनसे मिलना चाहते थे, तो पहली बात तो हम पहुँच नहीं पाए। लेकिन अच्छी बात ये थी कि पूरे टाइम हम लोग वो लाइव देख रहे थे।
1: जब पीएम खुद वो विजुअल देश में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई,
2: बिल्कुल। देखिए क्या है कि उनका इस तरह से स्टेप लेना कि वो आए, कुर्सी पे बैठे हुए थे, अपने हाथ में कुछ इंस्ट्रूमेंट लेके बजा रहे थे, झूम रहे थे, और जिस तरह से वो ये कर रहे थे, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो बच्चों के बीच में बच्चे बन गए हैं। तो ये क्या है ना, ये एक मेरे समझ से कि एक जो एक सिद्ध संत होता है ना, वो कर सकता है। मेरे लिए तो वो सिद्ध संत जैसे ही हैं।
1: पीएम यहाँ पर खुद पहुँचे, उन्होंने आप सबके साथ इस भजन क्लबिंग को एंजॉय किया, क्या सोचते हैं उनके बारे में, कनेक्ट होने की आप सबसे कोशिश कर रहे हैं?
3: हाँ, वो अब जेन ज़ी के लिए बहुत ज़्यादा अपडेट है, मतलब इंस्टाग्राम पे भी, सोशल पे बहुत ज़्यादा अपडेट है। पहले वो रील नहीं बनाते थे, अब रील भी बनाने लग गए वो।
4: कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ एक भजन क्लबिंग के फंक्शन में आ रहे हैं, ये सब तो बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत शॉर्ट में कहूँ मोदी जी ने क्या किया, तो मोदी जी ने क्लॉकेट कर दिया, क्लॉकेट कुछ पूछू मोदी जी, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा।
5: मुझे लगता है ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि जेंजीज को माइथोलॉजी की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये क्लबिंग का कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत ही अच्छा है, और हमें नहीं पता था कि पीएम आने वाले हैं।

0: And those are the visuals of the Prime Minister attending a bhajan clubbing event in Delhi to mark the birth anniversary of Pandit Deen Dayal Upadhyay. Videos from the evening showed Prime Minister sitting in the front row of the audience while singers and musicians on stage sang devotional songs. Bhajan clubbing, remember, is a trend that blends traditional devotional music with modern concert-like setting and has found particular resonance among the youth audiences, including the Gen Z as well. It was also highlighted by the Prime Minister during his Mann Ki Baat broadcast earlier this year.
1: आप आज खुद भजन क्लबिंग में यहाँ पर पहुँचे, इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भी शिरकत की, जमकर वो झूमे, कैसे ये सारी चीज़ें देखते हैं और आपके संगीत पर प्रधानमंत्री जब यहाँ पर झूम रहे थे तो वो एहसास कैसा था?
2: देखिए, सत्य बताऊँ तो मैं बहुत लेट पहुँचा यहाँ पे और जब मैं पहुँचा तो प्रोग्राम ख़त्म हो चुका था और प्रधानमंत्री जी जा चुके थे, तो उस चीज़ का बहुत बुरा लगा कि उनको देख नहीं पाया सामने से, क्योंकि वो तो हम सब के, मतलब मैं क्या ही बोलूँगा, मेरे लिए तो वो भगवान जैसे ही हैं, क्योंकि वो देश के लिए जिस समर्पण से काम करते हैं और सबके बारे में इतना सोचते हैं, हर वर्ग के बारे में इतना सोचते हैं, तो हम तो उनसे मिलना चाहते थे, तो पहली बात तो हम पहुँच नहीं पाए। लेकिन अच्छी बात ये थी कि पूरे टाइम हम लोग वो लाइव देख रहे थे।
1: जब पीएम खुद, वो विजुअल आपने भी देखा होगा, हमने सबने देखा, वो खुद यहाँ पर जब वो भजन यहाँ पर थे और वो खुद झूम रहे थे, वो एहसास, वो फीलिंग, वो कैसी थी? आप खुद, आप तो देखते हुए आ रहे थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो गाने थे वो उसी मूवी के हैं जो इस समय पूरे देश में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई।
2: बिल्कुल, देखिए क्या है कि उनका इस तरह से स्टेप लेना कि वो आए, कुर्सी पे बैठे हुए थे, अपने हाथ में कुछ इंस्ट्रूमेंट लेके बजा रहे थे, झूम रहे थे, और जिस तरह से वो ये कर रहे थे, मतलब ऐसा लग रहा

0: And those are the visuals of the Prime Minister attending a bhajan clubbing event in Delhi to mark the birth anniversary of Pandit Deen Dayal Upadhyay. Videos from the evening showed Prime Minister sitting in the front row of the audience while singers and musicians on stage sang devotional songs. Bhajan clubbing, remember, is a trend that blends traditional devotional music with modern concert-like setting. His Mann Ki Baat broadcast earlier this year.
1: आप आज खुद भजन क्लबिंग में यहाँ पर पहुँचे, इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भी शिरकत की, जमकर वो झूमे, कैसे ये सारी चीज़ें देखते हैं और आपके संगीत पर प्रधानमंत्री जब यहाँ पर झूम रहे थे तो वो एहसास कैसा था?
2: देखिए, सत्य बताऊँ तो मैं बहुत लेट पहुँचा यहाँ पे, और जब मैं पहुँचा तो प्रोग्राम ख़त्म हो चुका था और प्रधानमंत्री जी जा चुके थे, तो उस चीज़ का बहुत बुरा लगा कि उनको देख नहीं पाया सामने से, क्योंकि वो तो हम सब के, मतलब मैं क्या ही बोलूँगा, मेरे लिए तो वो भगवान जैसे ही हैं, क्योंकि वो देश के लिए जिस समर्पण से काम करते हैं और सबके बारे में इतना सोचते हैं, हर वर्ग के बारे में इतना सोचते हैं, तो हम तो उनसे मिलना चाहते थे, तो पहली बात तो हम पहुँच नहीं पाए। लेकिन अच्छी बात ये थी कि पूरे टाइम हम लोग वो लाइव देख रहे थे।
1: जब पीएम खुद, वो विजुअल आपने भी देखा होगा, हमने सबने देखा, वो खुद यहाँ पर जब वो भजन यहाँ पर थे और वो खुद झूम रहे थे, वो एहसास, वो फीलिंग, वो कैसी थी? आप खुद, आप तो देखते हुए आ रहे थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो गाने थे वो उसी मूवी के हैं जो इस समय पूरे देश में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई।
2: बिल्कुल, देखिए क्या है कि उनका इस तरह से स्टेप लेना कि वो आए, कुर्सी पे बैठे हुए थे, अपने हाथ में कुछ इंस्ट्रूमेंट लेके बजा रहे थे, झूम रहे थे, और जिस तरह से वो ये कर रहे थे, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो बच्चों के बीच में बच्चे बन गए हैं। तो ये क्या है ना, ये एक मेरे समझते कि एक जो एक सिद्ध संत होता है ना, वो कर सकता है। मेरे लिए तो वो सिद्ध संत जैसे ही हैं।
1: पीएम यहाँ पर खुद पहुँचे, उन्होंने आप सबके साथ इस भजन क्लबिंग को एंजॉय किया, क्या सोचते हैं उनके बारे में, कनेक्ट होने की आप सबसे कोशिश कर रहे हैं?
3: हाँ, वो अब जेन जी के लिए बहुत ज़्यादा अपडेट है, मतलब इंस्टाग्राम पे भी, सोशल पे बहुत ज़्यादा अपडेट है। पहले वो रील नहीं बनाते थे, अब रील भी बनाने लग गए वो।
4: कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ एक भजन क्लबिंग के फंक्शन में आ रहे हैं, ये सब तो बहुत अच्छी चीज़ है।
5: बहुत शॉर्ट में कहूँ मोदी जी ने क्या किया, तो मोदी जी ने क्लॉकेट कर दिया, क्लॉकेट कुछ पूछूँ मोदी जी, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा।
6: मुझे लगता है ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि जेंजीज को माइथोलॉजी की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये क्लबिंग का कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत ही अच्छा है। और हमें नहीं पता था कि पीएम आने वाले हैं, सो व्हेन ही एंटर्ड इट वाज अ वेरी गुड मोमेंट, हम लोगों को गूज़बम्स भी आ गया, तो बहुत ही अच्छा था।
7: स्वयं

0: PIL is against file against the CEC, Gyanesh Kumar, in Supreme Court as well. We are getting in certain political reactions on the story. Let's listen into that.
1: There are facts, there is evidence. It is there for the whole country to see. My brother has shown it in many different press conferences. He has put the evidence forward. Now it is very clear 13 crore voters have been deleted. This is a lame excuse, and the BJP should stop making lame excuses. If they are meddling with our elections, and if their leadership is making the election commission do this, then it is an act of treason and they should be aware of it.
2: देखिए राहुल गांधी जी ने कल जो भी बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीसी की वर्किंग के बारे में वो पूरा झूठ का पुलिंदा है. किसी भी तरह की सत्यता उनमें नहीं है ना वो प्रमाणित कर सकते हैं. झूठ बोलते हैं और वातावरण खराब करते हैं और भाग जाते हैं.
3: आपने लोकतंत्र की हत्या की. आप आतंकवादी से भी बड़ा गलत भूमिका निभाया. आपने दलित एसटी एससी ईबीसी और माइनॉरिटीज के वोट के 13 करोड़ वोट को काटा. तो आप लोकतंत्र के हत्यारे हैं. आप आतंकवादी से बुरा व्यवहार किया है. आपको फांसी होनी चाहिए. राष्ट्रों का मुकदमा होना चाहिए.
4: 4-6 महीना में विरोधी लोग एक इशू निकाल के लाते हैं और हमेशा ऐसा इशू लाते हैं जो देश के खिलाफ है, देश के इंस्टीट्यूशन के खिलाफ है, देश की बदनाम करने की इशू रहती है. जनता के सामने धीरे धीरे ये सब साफ हो रहा है. एक कुछ नहीं स्टैंड छोड़ करके जैन जी हो गया, अब गणेश कुमार जी को लेके पड़े हैं. देश की जितनी संस्था है उसको कमजोर करने की साजिश चल रही है.
0: And while the opposition is uniting against the CEC's removal demand, there seems to be a disagreement within the NDA. Union Minister Chirag Paswan, an NDLI, has publicly called on CEC Gyanesh Kumar to clarify the Election Commission's position amid the controversy over reported differences within the poll panel. Now, Chirag Paswan has said that it would be problematic if doubts about the electoral process took root among the public, placing the responsibility on the CEC to address them.
5: नहीं पता, मैं सरकार का हिस्सा होने के नाते मैं किसी को डिफेंड नहीं करूंगा. ऐसे में एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग. ऐसे में अगर चुनाव आयोग के ऊपर ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं तो मैं मानता हूं कि ये जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की है, खासतौर पे सीईसी की है, कि वो अपने पक्ष में अपनी बातों को मजबूती से रखें. देखिए विपक्ष क्या बोलता है नहीं बोलता है मुझे उस बात से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है. विपक्ष का काम है राजनीति करना. आप अगर आरोप नहीं लगाएंगे तो आप अपनी राजनीति को साधेंगे कैसे. पर ऐसे में विपक्ष को संतुष्ट कराने के लिए सीईसी को नहीं बल्कि जनता को विश्वास में लेने के लिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है ये. ऐसे में अगर चुनावी प्रक्रिया के ऊपर ही लोगों का विश्वास या संदेह खड़ा हो जाएगा तो ये गलत है.
0: Shifting our focus to breaking news that's just coming in, M.K. Stalin has launched a sharp counter-attack on Vijay over the Veeramani case. Stalin has rejected any DMK connection to the case and has asked Vijay, the Chief Minister of Tamil Nadu, if he has forgotten to update his script. And he has also said that the High Court has advised against politicizing the matter. Stalin has also hit back over the Karur tragedy, accusing Vijay of having run and hidden after 40 people had lost their lives, and asked the Chief Minister to conduct some self-examination. Let's tell you more about what the case in Tamil Nadu is all about that's making headlines nationwide. Well, Tamil Nadu's Veeramani Posso case has exploded into a political showdown, with Veeramani in custody till October 9th. Vijay is alleging a cover-up and questioning a possible DMK deal. Stalin has hit back, rejecting the charge and telling the Chief Minister to update his script. The war of words has now escalated, with Vijay accusing the previous DMK government of covering up the abuse allegations and demanding answers from Stalin. Stalin, meanwhile, has rejected the allegations, as he has raked up the Karoo stamp and denied any DMK connection to the case, and has hit back at Vijay. The former Chief Minister has also accused Vijay of politicizing the issue and asking the Chief Minister to introspect. The investigation is now entering a crucial phase, with an all-women SIT examining the case and the handling of evidence during the earlier probe.
6: நம்ம தமிழ்நாட்டு இளம் பெண்கள அந்த பச்சை பிள்ளைகள ஒருத்தன் இத்தனை வருஷமா சீரழிச்சுக்கிட்டு இருந்திருக்கிறான். அந்த கேஸ் போன

0: And those are the visuals of the Prime Minister attending a bhajan clubbing event in Delhi to mark the birth anniversary of Pandit Deen Dayal Upadhyay. Videos from the evening showed Prime Minister sitting in the front row of the audience while singers and musicians on stage sang devotional songs. Bhajan clubbing, remember, is a trend that blends traditional devotional music with modern concert-like setting and has found particular resonance among the youth audiences, including the Gen Z as well. It was also highlighted by the Prime Minister during his Mann Ki Baat broadcast earlier this year.
1: आप आज खुद भजन क्लबिंग में यहाँ पर पहुँचे, इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भी शिरकत की, जमकर वो झूमे, कैसे ये सारी चीज़ें देखते हैं और आपके संगीत पर प्रधानमंत्री जब यहाँ पर झूम रहे थे तो वो एहसास कैसा था?
2: देखिए, सत्य बताऊँ तो मैं बहुत लेट पहुँचा यहाँ पे, और जब मैं पहुँचा तो प्रोग्राम ख़त्म हो चुका था और प्रधानमंत्री जी जा चुके थे, तो उस चीज़ का बहुत बुरा लगा कि उनको देख नहीं पाया सामने से, क्योंकि वो तो हम सब के, मतलब मैं क्या ही बोलूँगा, मेरे लिए तो वो भगवान जैसे ही हैं, क्योंकि वो देश के लिए जिस समर्पण से काम करते हैं और सबके बारे में इतना सोचते हैं, हर वर्ग के बारे में इतना सोचते हैं, तो हम तो उनसे मिलना चाहते थे, तो पहली बात तो हम पहुँच नहीं पाए, लेकिन अच्छी बात ये थी कि पूरे टाइम हम लोग वो लाइव देख रहे थे।
1: जब PM खुद, वो विजुअल आपने भी देखा होगा, हमने सब ने देखा, वो खुद यहाँ पर जब वो भजन यहाँ पर थे और वो खुद झूम रहे थे, वो एहसास, वो फीलिंग वो कैसी थी? आप खुद, आप तो देखते हुए आ रहे थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो गाने थे वो उसी मूवी के हैं जो इस समय पूरे देश में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई।
2: बिल्कुल, देखिए क्या है कि उनका इस तरह से स्टेप लेना कि वो आए, कुर्सी पे बैठे हुए थे, अपने हाथ में कुछ इंस्ट्रूमेंट लेके बजा रहे थे, झूम रहे थे, और जिस तरह से वो ये कर रहे थे, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो बच्चों के बीच में बच्चे बन गए हैं। तो ये क्या है ना, ये
1: इस भजन क्लबिंग को एंजॉय किया, क्या सोचते हैं उनके बारे में, कनेक्ट होने की आप सबसे कोशिश कर रहे हैं?
3: हाँ, वो अब जेन ज़ी के लिए बहुत ज़्यादा अपडेट है, मतलब इंस्टाग्राम पे भी, सोशल पे बहुत ज़्यादा अपडेट है। पहले वो रील नहीं बनाते थे, अब रील भी बनाने लग गए वो।
4: कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ एक भजन क्लबिंग के फंक्शन में आ रहे हैं, ये सब तो बहुत अच्छी चीज़ है।
5: बहुत शॉर्ट में कहूँ मोदी जी ने क्या किया, तो मोदी जी ने क्लॉकेट कर दिया, क्लॉकेट कुछ पूछू मोदी जी, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा।
6: मुझे लगता है ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि जेन ज़ीज़ को माइथोलॉजी की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये क्लबिंग का कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत ही अच्छा है। और हमें नहीं पता था कि PM आने वाले हैं, सो व्हेन ही एंटर्ड इट वाज अ वेरी गुड मोमेंट, हम लोगों को गूज़बम्स भी आ गया, तो बहुत ही अच्छा था।
7: स्वयं हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री आए हैं यूथ से कनेक्ट करने के लिए, जैसे आपको पता ही है, जैसे कि आजकल बड़ा ही हिप हॉप हो गया, क्या हो गया, हम बड़े साइडलाइन हो रहे हैं अपने ट्रेडिशनल इन सब से लेके, हमारे जो रूट्स हैं उनसे, तो एक अच्छा इनिशिएटिव है कनेक्ट करने के लिए यार।
0: With that, it's time for us to sip in a very quick commercial break. Don't go anywhere, news and update continue.
8: A generation with questions.
9: The starring and the whole glamorous side of it.
10: As I said, like, I can't empathize with it.
8: Unconventional.
11: I feel blessed. As long as the work is going on, I'm happy.
8: Unapologetic. Unafraid of change. Ready to challenge.
12: Aspirational.
8: The ideas. The issues.
13: You really are.
8: The young view.
14: Public perception.
8: NDTV Yuva. 28 September 2026. Only on the NDTV network.
15: 5 hours to go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Siddaramaiah.
16: NDTV stands completely engaged with Karnataka.
17: High rate, check the audio, high rate, check the audio.
16: Let's do it, let's do it, let's start.
18: Breaking story, we're jumping straight into it.
16: We've got a picture of the letter. What is in your

0: पंजाब लुधियाना से,
1: जोधपुर राजस्थान से,
2: जूनागढ़ गुजरात से आया हूँ,
3: मुंबई गोरेगांव,
4: चित्तौड़गढ़ राजस्थान। कब आए?
5: हम परसों आए थे, कल हम जिम कार्पेट गए थे और कल नैनीताल हो गए, आज इधर आए।
0: कल रात को निकले, आज पहुंच गए।
1: हम कल ही आए थे ट्रेन से और अभी आज

0: been several years since the passing away of Neem Karoli Baba, but people still come here looking for him. Some knew him personally, while others have been coming here for several years now. Many others are only discovering his story now.
1: This is the destination, the holy grail that the pilgrims here seek, Kenchi Dham.
2: जीवन है आज वो बाबा जी का दिया हुआ है। मैं बाबा जी को बार बार प्रणाम करता हूँ।
3: कुछ फैमिली इशू वगैरह कुछ है तो अंदर से हुआ कि वहाँ जाके आए भगवान के, तो सारे सॉल्व हुए, इसलिए फिर हम दोनों आए।
4: मैं सबसे पहले 2019 में आया था, वो भी रैंडम प्लान बन गया था। मैं ऐसे नॉर्मल वीडियो देख रहा था इंस्टा पे, फिर वो नीम करौली बाबा की एक वीडियो आई, फिर मेरा प्लान बन गया। उसके बाद से बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मैं 18 महीने में 10 बार आ चुका।
5: पहली बार सोच रही थी आने का पर मैं नहीं आ पा रही थी। फिर मुझे गुस्सा आया बजरंगबली के ऊपर, बाबा के ऊपर। मैंने उनको एक जैसे फादर बोलते हैं वैसे उनको चिल्लाया कि आप मुझे बुलाते नहीं हो। फिर अचानक से हमारा अचानक ही प्लान बना जाने का, फिर तब से आ ही रहे हैं। तब से 6 महीने में 5 महीने में चक्कर लग जाता
6: है। स्वर्ग देखना है, ये है हमारा स्वर्ग। बोलो सीता।
1: And there lies the curious thing. They know the name, they've been told. They recognize the face, they've seen pictures. Many know the stories, they've heard it often enough. But most people who come here today could never have known the man.

0: In Farukabad district of Uttar Pradesh, there's a village called Neeb Karori. Accounts place Lakshman Narayan Sharma here for an extended period as a resident sadhu. And the name of the village became attached to the man they looked at with holy reverence, Neeb Karori Baba. The surviving images draw a simple picture. A dhoti, a blanket, people around him. The Baba did not leave much in way of his own writing. Much of what is ascribed to him is from the recollections of those who spent time with him.
1: पहली बार आप कब मिले बाबा से?
2: उस टाइम में हम बच्चे थे, मैं कक्षा 2-3 में ही पढ़ता था. ऐसा थे वो हम जैसों को जैसे हम थे. अभी ये बच्चे ही हैं, इनसे क्या बात करो ज़्यादा. और वो हंसी मजाक भी करते थे वो हमसे थे. हमसे करते थे कुश्ती लड़ो तुम बाहर से, कुश्ती लड़ो तो जो जीतेगा मैं उसको ये दूंगा, मिठाई दूंगा. हम कुश्ती लड़ते थे, हम छोटे, इससे कुछ बड़ा होगा ऐसे ही होगा.
1: जी जी. आपकी एज क्या थी जब आप पहली बार उनसे मिले थे?
3: मेरी 15 साल की उम्र थी, 1963 में प्रथम दर्शन किया.

0: For most people arriving at Kechi, this is the destination. For the man beside us, it is a place of memory.
1: इंदर के बाद मुझे पढ़ाई के लिए हायर पढ़ाई के लिए नैनीताल आना था। मेरे लिए वहाँ पहुँचना और आसान हो गया क्योंकि बाबा महाराज कैंची में रहते थे और मैं नैनीताल से आता था, तो मेरे लिए कोई बहुत दुर्गम काज नहीं था। मैं कभी कभी पहुँच जाता था वहाँ। आज आप जितनी भीड़ देख रहे हैं, इतनी भीड़ नहीं आती थी, लेकिन अच्छा वो माहौल बना हुआ था वहाँ का। बड़ा बाबा जी की महाराज जी के पास बहुत प्रसन्नता वर्धक समय रहता था। जो दिन भर करा, शाम को गाड़ी से फिर वापस नैनीताल आ गए।
2: मन्नत अपने मांगी और पूरी हुई है
3: मेरी। कल मतलब जब मैं यहाँ पहली बार आई थी ना, तो मेरी लाइफ में चेंज हुआ था। सेकेंड टाइम आई थी तो मेरी शादी हो गई, लाइक वो जो मैंने प्रे किया था वही हुआ। और थर्ड टाइम वापस आई हूँ एक और नई विश के साथ।
4: दोस्तों ने बताया था कि उत्तराखंड में नीम करोली बाबा करके महाराज है, वो चमत्कारिक महाराज है। दिसंबर 2020 में मेरा राइट किडनी का ऑपरेशन हुआ था, जिस वजह से मेरी राइट किडनी समाप्त हो गई, खराब हो गई। वही प्रॉब्लम मेरी दूसरी किडनी में 4 साल बाद शुरू हुआ। मैंने बाबा जी से प्रार्थना की, दवाई चालू की, बाबा जी से प्रार्थना की कि बाबा जी अगर दूसरी किडनी में भी यही दिक्कत आती है, यही रोग आता है, तो मुझे मुश्किल, मेरा जीना मुश्किल हो जाता है। तो बाबा जी ने मेरी प्रार्थना सुनी। 15 दिनों में मेरी जो दिक्कत थी, वो मेरी दिक्कत बाबा जी ने संपूर्ण स्वस्थ करके दिक्कत मेरी दूर कर दी।
5: यही मानना था कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, चल नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, तो वही बाबा ले अर्जी है कि चला दें, बुला दें, और क्या है।
6: तो जब यहाँ आए पहली बार में, जो मन्नत किए थे वो पूरे होने लगी। फिर हर बार मतलब जैसे अपना एक फैमिली का मेंबर होता, मिलने के बिना नहीं रह सकते, सेम वैसे यहाँ आना स्टार्ट हो गए।
0: स्टोरीज लाइक दिस आर पार्ट ऑफ द मेमोरी सराउंडिंग नीम करोली बाबा। फॉर दोज हु टेल देम देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ फेथ, they're not claims to be independently verified, acknowledged as articles of belief, and not a factual catalog of miracles. After years of traveling, another road brought him here, to the Kumaon Hills, to a small settlement on the road between Nainital and Almora, Kechi. In the early 1960s, an ashram began to take shape. The Hanuman Temple at Kechi was consecrated in June 1964. And Kechi became most closely associated with Neem Karoli Baba. For years,

0: से पहली बार आपको पता
1: लगा? जब मैं पढ़ता था, जब मैं छोटा सा था, तो हमारे स्कूल का ट्रूप आया था, तो हम छोटे बच्चों को लेके नहीं आए थे, तो जब से ही तमन्ना थी मैं बाबा के जाए।
2: अभी जो मूवी देखा उसके बाद में बाबा का दर्शन करने का मन करा, उसके बाद इच्छा करी इमीडिएटली। लास्ट वीक मैं सब टिकट वगैरह बुक करके आज बाबा के दर्शन के लिए पहुंचा।
3: ये मेरे अंकल के थ्रू मुझे पता लगा था, उनको भी शायद रील से इंस्टाग्राम के थ्रू पता लगा था, जैसा कि फेसबुक के ऑनर सीईओ मार्क ज़करबर्ग के बारे में, तो बस वहीं से फिर हमने यहाँ पे आना चालू किया था।
4: बाबा के बारे में ऐसे पता लगा हमें कि यूट्यूब पे इंस्टा पे देखा, बाबा की महिमा सुनी, तो हम बहुत प्रभावित हुए।
5: Steve Jobs, who came here searching for Neem Karoli Baba, to Virat Kohli, the names associated with him span across generations as well as continents. Different people, different journeys, but the same strings pull each and every one of them to Kenya.

0: Their visit was photographed, reported, and widely shared.
1: विराट के बंदे की कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा जो उसकी क्या होता है, एक बार उसको खेलने से मना कर दिया था, कुछ कराया था ना।
2: अच्छा
1: हाँ, तो बड़ा व्यवसायिक हो गया था। उन दिनों आया था उसकी वाइफ ने कहा चलो बाबा जी के पास जाते हैं
2: जी,
1: वही करेंगे उद्धार वाला। आए तब तब आए जो यहाँ
3: ड्राइवर ने बहुत कोशिश की साहब, अरे चलना तो छोड़िए साहब, गाड़ी हिली तक नहीं, एक बाबा को उतार दिया।
4: Throw them out right now!

0: ठीक है बेटा, हम तो बहता पानी है, कहीं भी रम जाएंगे।
1: And now, the story has found another screen. Hanuman Ansh.
2: Swami ho tum, gaadho nata Baba ji.
1: A film inspired by the life and the stories that surround the spiritual journey of Neem Karoli Baba began quietly. Then, people began turning up. A film about a Baba who died more than 50 years ago.
3: मैंने हनुमान अंश मूवी मेरे परिवार के साथ देखी है। ऐसा ही लग रहा था कि साक्षात बाबा ही हमें दिखाई दे रहे हैं, और जो अनुभूति थी वो मैं शब्दों में नहीं कह सकता।
4: मूवी देखी थी लास्ट वीक, और मैं मानता नहीं हूँ भगवान में कि कुछ होता है ऐसा, बट मूवी देखी उसके बाद पढ़ा तो लगा कि हाँ कुछ तो होगा जो इतने लोग आते हैं। तो बस
5: अभी तो ये मूवी का क्रेज है तो इतनी भीड़, इतना क्राउड है। बाकी जब मूवी नहीं थी तब इतना कुछ क्राउड नहीं था, हमने अंदर बैठ के सत्संग किया था, सुंदरकांड पाठ किया था।
6: अभी जो मूवी देखा उसके बाद में बाबा का दर्शन करने का मन करा, उसके बाद इच्छा कही।
2: सेवक हम स्वामी हो तुम।
1: द मीडियम चेंज्ड, द स्टोरी केप्ट फाइंडिंग न्यू ऑडियंसेस। And with every new audience, more people found their way here.
7: तो जी इस टाइम से सितंबर टाइम चल रहा है, ये एक तरह से ऑफ सीजन माना जाता था, काफ़ी कम भीड़ आती थी, मतलब मुश्किल से 10,000 लोग मतलब दिन में आ जाते थे, लेकिन इस टाइम पे वो देखने को मिला मूवी के बाद से काफ़ी भीड़ हो रही है।
8: महाराज जी कम्बल ओढ़ रखते थे हमेशा, तो ऑफरिंग यहाँ से पहले से भी हम लोग मतलब जैसे दिवाली वगैरह हो गया, कोई ओकेजन है वैसे हम लोग उस टाइम पे ब्लैंकेट्स वगैरह चढ़ाते हैं महाराज जी को, तो वही सारी चीज़ें नॉर्मली चलती हैं, तो पहले से ही हम लोग यहाँ पे ब्लैंकेट बेचते थे। और हाँ, दादी हमारी आज भी कहती है कि महाराज जी कहते थे कि विश लौट कर आएगा यहाँ पे, वो रियलिटी है, महाराज जी कह गए थे वो है सच में, वो चेंज हो चुका है, वो चेंज आ गया, पूरा विश लौट के कैची गया।
1: कैची हैज चेंज्ड, but the reason people come here perhaps hasn't.
9: अलग ही पीस मिल रहा है, अच्छी जगह है, और बाबा के दर्शन करके और अच्छा लगेगा, आपको आनंद प्राप्त होगा,
10: बहुत अच्छा और सुकून भरा लगता है, यहाँ पे शांति है।
6: जो लोगों ने बताया था उससे ऊपर यहाँ महसूस हुआ, बहुत ही पॉजिटिव वेव्स यहाँ मिलती है, मुझे बहुत ही अच्छा आनंद हुआ। जय सीताराम।
1: They came here looking for something. What they found is theirs to know.

0: certain political reactions on the story. Let's listen into that.
1: There are facts, there is evidence. It is there for the whole country to see. My brother has shown it in many different press conferences. He has put the evidence forward. Now it is very clear 13 crore voters have been deleted. This is a lame excuse, and the BJP should stop making lame excuses. If they are meddling with our elections, and if their leadership is making the Election Commission do this, then it is an act of treason and they should be aware of it.
2: देखिए, राहुल गांधी जी ने कल जो भी बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीसी की वर्किंग के बारे में, वो पूरा झूठ का पुलिंदा है। किसी भी तरह की सत्यता उनमें नहीं है, ना वो प्रमाणित कर सकते हैं। झूठ बोलते हैं और वातावरण खराब करते हैं और भाग जाते हैं।
3: आपने लोकतंत्र की हत्या की, आप आतंकवादी से भी बड़ा गलत भूमिका निभाया। आपने दलित एसटीएससी ईबीसी और माइनॉरिटीज के वोट के 13 करोड़ वोट को काटा, तो आप लोकतंत्र के हत्यारे हैं। आप आतंकवादी से बुरा व्यवहार किया है, आपको फांसी होनी चाहिए, राष्ट्रों का मुकदमा होना चाहिए।
4: 4-6 महीने में विरोधी लोग एक इशू निकाल के लाते हैं, और हमेशा ऐसा इशू लाते हैं जो देश के खिलाफ है, देश के इंस्टीट्यूशन के खिलाफ है, देश की बदनाम करने की इशू रहती है। जनता के सामने धीरे धीरे ये सब साफ हो रहा है, ये कुछ नहीं स्टैंड छोड़ करके। जैन जी हो गया, अब गणेश कुमार जी को लेके पड़े हैं। देश की जितनी संस्था है उसको कमजोर करने की साजिश चल रही है।
0: And while the opposition is uniting against the CEC's removal demand, there seems to be a disagreement within the NDA. Union Minister Chirag Paswan, an NDA ally, has publicly called on CEC Ganesh Kumar to clarify the Election Commission's position amid the controversy over reported differences within the poll panel. Now, Chirag Paswan has said that it would be problematic if doubts about the electoral process took root among the public, placing the responsibility on the CEC to address them.
5: नहीं पता, मैं सरकार का हिस्सा होने के नाते मैं किसी को डिफेंड नहीं करूंगा। ऐसे में एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग। ऐसे में अगर चुनाव आयोग के ऊपर ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि ये जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की है, ख़ास तौर पे सीईसी की है, कि वो अपने पक्ष में अपनी बातों को मजबूती से रखें। देखिए, विपक्ष क्या बोलता है नहीं बोलता है मुझे उस बात से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। विपक्ष का काम है राजनीति करना। आप अगर आरोप नहीं लगाएंगे तो आप अपनी राजनीति को साधेंगे कैसे? पर ऐसे में विपक्ष को संतुष्ट कराने के लिए सीईसी को नहीं, बल्कि जनता को विश्वास में लेने के लिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है ये। ऐसे में अगर चुनावी प्रक्रिया के ऊपर ही लोगों का विश्वास या संदेह खड़ा हो जाएगा तो ये गलत है।
0: Shifting our focus to breaking news that's just coming in, M.K. Stalin has launched a sharp counter-attack on Vijay over the Veeramani case. Stalin has rejected any DMK connection to the case and has asked Vijay, the Chief Minister of Tamil Nadu, if he has forgotten to update his script. And he has also said that the High Court has advised against politicizing the matter. Stalin has also hit back over the Karur tragedy, accusing Vijay of having run and hidden after 40 people had lost their lives, and asked the Chief Minister to conduct some self-examination. Let's tell you more about what the case in Tamil Nadu is all about that's making headlines nationwide. Well, Tamil Nadu's Veeramani Posso case has exploded into a political showdown, with Veeramani in custody till October 9th. Vijay is alleging a cover-up and questioning a possible DMK deal. Stalin has hit back, rejecting the charge and telling the Chief Minister to update his script. The war of words has now escalated, with Vijay accusing the previous DMK government of covering up the abuse allegations and demanding answers from Stalin. Stalin, meanwhile, has rejected the allegations, as he has raked up the Karur stampede and denied any DMK connection to the case, and has hit back at Vijay. The former Chief Minister has also accused Vijay of politicizing the issue and asking the Chief Minister to introspect. The investigation is now entering a crucial phase, with an all-women SIT examining the case and the handling of evidence during the earlier probe.
6: நம்ம தமிழ்நாட்டு இளம் பெண்களே, அந்த பச்சை பிள்ளைங்களே, ஒருத்தன் இத்தனை வருஷமா சீரழிச்சுக்கிட்டு இருந்திருக்கிறான். அந்த கேஸ் போன டிஎம்கே கவர்மெண்ட்ல வந்தும் அந்த கேஸை, அந்த சாப்டரை, அந்த ஹிஸ்டரி

0: And those are the visuals of the Prime Minister attending a bhajan clubbing event in Delhi to mark the birth anniversary of Pandit Deen Dayal Upadhyay. Videos from the evening showed Prime Minister sitting in the front row of the audience while singers and musicians on stage sang devotional songs. Bhajan clubbing, remember, is a trend that blends traditional devotional music with modern concert-like setting and has found particular resonance among the youth audiences, including the Gen Z as well. It was also highlighted by the Prime Minister during his Mann Ki Baat broadcast earlier this year.
1: आप आज खुद भजन क्लबिंग में यहाँ पर पहुँचे, इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भी शिरकत की, जमकर वो झूमे, कैसे ये सारी चीज़ें देखते हैं और आपके संगीत पर प्रधानमंत्री जब यहाँ पर झूम रहे थे तो वो एहसास कैसा था?
2: देखिए, सत्य बताऊँ तो मैं बहुत लेट पहुँचा यहाँ पे, और जब मैं पहुँचा तो प्रोग्राम ख़त्म हो चुका था और प्रधानमंत्री जी जा चुके थे, तो उस चीज़ का बहुत बुरा लगा कि उनको देख नहीं पाया सामने से, क्योंकि वो तो हम सब के, मतलब मैं क्या ही बोलूँगा, मेरे लिए तो वो भगवान जैसे ही हैं, क्योंकि वो देश के लिए जिस समर्पण से काम करते हैं और सबके बारे में इतना सोचते हैं, हर वर्ग के बारे में इतना सोचते हैं, तो हम तो उनसे मिलना चाहते थे, तो पहली बात तो हम पहुँच नहीं पाए, लेकिन अच्छी बात ये थी कि पूरे टाइम हम लोग वो लाइव देख रहे थे।
1: जब पीएम खुद, वो विजुअल आपने भी देखा होगा, हमने सब ने देखा, वो खुद यहाँ पर जब वो भजन यहाँ पर थे और वो खुद झूम रहे थे, वो एहसास, वो फीलिंग, वो कैसी थी? आप खुद, आप तो देखते हुए आ रहे थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो गाने थे वो उसी मूवी के हैं जो इस समय पूरे देश में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई।
2: बिल्कुल, देखिए क्या है कि उनका इस तरह से स्टेप लेना कि वो आए, कुर्सी पे बैठे हुए थे, अपने हाथ में कुछ इंस्ट्रूमेंट लेके बजा रहे थे, झूम रहे थे, और जिस तरह से वो ये कर रहे थे, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो बच्चों के बीच में बच्चे बन गए हैं। तो ये क्या है ना, ये एक मेरे समझ से कि एक जो एक सिद्ध संत होता है ना, वो कर सकता है, मेरे लिए तो वो सिद्ध संत जैसे ही हैं।
1: पीएम यहाँ पर खुद पहुँचे, उन्होंने आप सबके साथ इस भजन क्लबिंग को एंजॉय किया, क्या सोचते हैं उनके बारे में, कनेक्ट होने की आप सबसे कोशिश कर रहे हैं?
3: हाँ, वो अब जेन ज़ी के लिए बहुत ज़्यादा अपडेट है, मतलब इंस्टाग्राम पे भी, सोशल पे बहुत ज़्यादा अपडेट है, पहले वो रील नहीं बनाते थे, अब रील भी बनाने लग गए वो।
4: कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ एक भजन क्लबिंग के फंक्शन में आ रहे हैं, ये सब तो बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत शॉर्ट में कहूँ मोदी जी ने क्या किया, तो मोदी जी ने क्लॉकेट कर दिया, क्लॉकेट कुछ पूछू मोदी जी, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा।
5: मुझे लगता है ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि जेंजीज को माइथोलॉजी की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये क्लबिंग का कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत ही अच्छा है, और हमें नहीं पता था कि पीएम आने वाले हैं, सो व्हेन ही एंटर्ड इट वाज अ वेरी गुड मोमेंट, हम लोगों को गूज़बम्प्स भी आ गया, तो बहुत ही अच्छा था।
6: स्वयं हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री आए हैं यूथ से कनेक्ट करने के लिए, जैसे आपको पता ही है, जैसे कि आजकल बड़ा ही हिप हॉप हो गया, क्या हो गया, हम बड़े साइडलाइन हो रहे हैं अपने ट्रेडिशनल इन सब से लेके, हमारे जो रूट्स हैं उनसे, तो एक अच्छा इनिशिएटिव है कनेक्ट करने के लिए यार।
0: With that, it's time for us to sip in a very quick commercial break. Don't go anywhere, news and update continue.
7: Voices that redraw boundaries.